107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है मंगलवार, शक संवत 1948, भाद्रपद माह, 17वीं तिथि तदनुसार 8 सितंबर सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। 6 बजने को है अब समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश

मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लक्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का

0: ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है वंदन।

आज का चिंतन। संत कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें किताबें पढ़कर दुनिया में कितने ही लोग चले गए, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। वास्तव में ज्ञानी वही है जो प्रेम, सौहार्द, मानवता, परोपकार की भाषा पढ़ सके। अप्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। झरोखा में आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8 बजे। सुबह 9:30 बजे आज का अखबार प्रोग्राम, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में म्यूजिकल नंबर्स। दस बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर आप प्रोग्राम सुनेंगे सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम।

दिन में 11 बजे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज हम आपको जानकारी देंगे हिप फ्रैक्चर के बारे में, और ये जानकारी देंगे डॉक्टर संजय बदाधा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंड्रोक्रिनोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। दिन में 11 बजे प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन, 11:30 पर लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हैं मित्रा दे आपके लिए पेश करेंगे, और 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार लेके जाएंगे।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर, पहले हिंदी में, उसके बाद पंजाबी में, और यही क्रम रहता है शाम 6:10 पर, पहले हिंदी में, और उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे शाम 5:30।

शाम 6:30 पर अमृत बानी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने और 8:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

आपके लिए पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, 6:45 पर संगीत सरिता, 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 प्रोग्राम हम है राही प्यार के फिल्मों से लिए गए युगल गाने इस प्रोग्राम में, 8:15 पर प्रोग्राम त्रिवेणी और 8:30 प्रोग्राम चित्रलोक। तो साथियों ये तो था झरोखा आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान भाग 305।

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। गाना आज आपने सुना भाग 305।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, किराना घराने में प्रस्तुतीकरण को लेकर जो बातें बताई गई हैं, उसकी जो विशेषता है वो कौन सी है?
2: बहुत सारी विशेषता है, अभी तक हमने चर्चा तो की है।
1: जी जी जी।
2: विलंबित लय, स्वर प्रधानता, मिंड गायकी,
1: सूक्ष्म
2: लगाव, अभी जो महत्वपूर्ण जो है, हाँ। जो सब घराने में रहते हैं लेकिन हमारे घर में भी, घराने में भी है
1: जी।
2: वो राग का स्वरूप, उसका व्याकरण,
1: हाँ।
2: उसकी शुद्धता, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए भी हम जो राग चुनते हैं वो थाट वाले राग चुनते हैं ज्यादातर
1: जी, जी।
2: और राग के मूल स्वरूप का संरक्षण तो हमें करना है।
1: बिल्कुल।
2: ज्यादातर थाट प्रधान राग अथवा संपूर्ण राग लेने की जो प्रथा है वो हमारे घराने में है।
1: अच्छा।
2: प्रत्येक राग को उसके मूल स्वरूप और पारंपरिक पहचान के साथ प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया जाता है।
1: जी जी।
2: राग के स्वरों पर, चलन पर, भाव पर अनावश्यक जो परिवर्तन हम नहीं करते।
1: अच्छा।
2: यानी कभी कभी क्या होता है, एक एक स्वर राग में अगर हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, थोड़ा कम लगाया, अभी देखो तोड़ी और मुल्तानी दोनों का स्वर एक ही है।
1: अच्छा।
2: लेकिन उसका जो मध्यम है मुल्तानी का, पंचम है, पंचम पर लगाव है, ठहराव है, इसके ऊपर ही इसको हम अलग करते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये जो है, ये व्याकरण जो है पूरा पालन करना इस घराने की गायकी में, राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, विशिष्ट पकड़ तथा स्वर प्रयोग,
1: जी जी जी,
2: इन सब चीजों को नियमों के अत्यंत सावधानी से हमें पालन करना पड़ता है।
1: अच्छा।
2: और यही राग की शास्त्रीय शुद्धता को बनाए रखता है। शास्त्रीय शुद्धता को भी रखना, उसका भाव भी रखना।
1: अच्छा।
2: ये सब बातें जो है उसका बहुत ही, इट इज लाइक अ मेडिटेशन, अध्यात्म ही है
1: जी, जी, जी।
2: प्रत्येक स्वर का एक उचित स्थान होता है।

0: स्वर को उसके निश्चित स्थान और उचित महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी स्वर का प्रयोग राग की प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब राग की जो पहचान है उसे जी भी हमें स्पष्ट करना है। विलंबित आलाप, मिंड और सूक्ष्म स्वर लगाव के माध्यम से राग का स्वरूप धीरे धीरे विकसित किया जाता है, जिससे राग की पहचान हो जाती है। और शुद्धता और भाव का संतुलन
1: जी,
0: किराना घराना केवल तकनीकी शुद्धता पर ही नहीं बल्कि राग के भाव और रस की अभिव्यक्ति पर भी समान रूप से बल देता है।
1: जी जी।
0: इसलिए गायकी शास्त्रीय होने के साथ साथ भावपूर्ण भी होती है।
1: वाह।
0: और भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हर आदमी का जो स्वभाव होता है उनका असर भी वहाँ पड़ता है।
1: जी बिल्कुल।
0: इसीलिए हमारी गुरुजी हमें हमेशा बोलती थी कि स्वभाव में जो ट्रांसपेरेंसी आप रखते, पारदर्शकता रखते, वही आपका गाना
1: आपके
0: है,
1: आपके गायन में भी वो
0: दिखती है। ये शुद्धता होनी है ना, और एक प्रामाणिक ये
1: क्या बात।
0: गहन विकास का महत्व यानी राग के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे अत्यंत महत्व और आवश्यक माना गया।
1: सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी बात है।
0: और प्रचलित राग जो किराना घराने में हमेशा गाते हैं, यमन, तोड़ी, दरबारी कानरा, भैरव, मुल्तानी, पुरिया, ललत, बागेश्री, मियाँ के मल्हार, शुद्ध कल्याण, पुरिया धनश्री, ऐसे सारे राग हैं जो संपूर्ण राग है जहाँ सब गाने के लिए अच्छा मिलता है, उसका व्याकरण का संभाल करने के लिए बहुत ही वाव है, ऐसे राग हम चुनते हैं। इसलिए मुझे लगता है यहाँ अगर मैं थोड़ा सा मुल्तानी गा के सुनाऊँ तो
1: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है।
0: मुल्तानी को हम पुरुष राग कहते हैं, उसके स्वर में जो पौरुष है और उनका जैसा है उसकी चलन में ही मधुवंती जाता है, वो थोड़ा नजाकतदार राग है।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, राग मुल्तानी पर आधारित जो फिल्मी गीत इस वक्त जहन में आ रहा है वो शबाब फिल्म का गाना है।
1: वाह वाह,
0: दया करो गिरधर गोपाल। उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज है, आइए सुनते हैं।
1: वाह, आमिर खान का नाम आया तो कहती हूँ
0: जी,
1: ये जो चीज मैंने गाई हो वो हमारे गुरुजी पंडित प्रसाद सावकर के पास
0: जी,
1: कुछ
0: जी, जी,
1: साल में हाँ। सीखी हूँ, उन्होंने दी है। वो कहते थे जब भी तुम्हारा रियाज कम होता है तब ऐसी चीज गाने का, तो आवाज की फिरक
0: अच्छा
1: बढ़ती है।
0: ओहो।
1: खान साहब का कुछ राग ही ऐसे है जिसमें उनकी फिरक और उनका जो वजन ये समझ में आता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: ये खान साहब का, चलो सुनेंगे।
0: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का

तुलसीदास फिल्म की रचना आपने सुनी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। जी एस नेपाली की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन था। आज संगीत जगत की महान कलाकार पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्मदिवस जन्मतिथि है। अपने जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पद्म विभूषण आशा भोसले को शत शत नमन।

0: बोले मिश्री गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

वो दिन कहाँ गए मेरे सपनों से मीठी गीतों से प्यारे, वो दिन कहाँ गए। वचन फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज़ में। प्रेम धवन की रचना आपने सुनी, संगीत निर्देशन रविशंकर का था।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सब सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

अमर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में शकील बदायनी के बोलते नौशाद की तर्ज थी। लीजिए अब सुनिए जागृति फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। कवि प्रदीप की ये रचना है, हेमंत कुमार की धुन।

चलो चले माँ, सपनों के गांव में, कांटों से दूर, फूलों की छांव में। जागृति फिल्म का ये बहुत ही सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था कवि प्रदीप ने और गाया था आशा भोसले ने। अब आपको सुनवा रहे हैं प्रभु की माया फिल्म का ये गीत। आशा भोसले की आवाज़ है, दीपक ने इस गीत को लिखा है और रवि ने इस गीत की धुन बनाई है।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गटले,
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

नवरात्रि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। जीएस नेपाली ने इस गीत को लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी। अब प्रस्तुत है बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले, तलत महमूद की, शैलेंद्र शब्दकार हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: सज धज के।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सविता सिंह का नमस्कार। आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए इस गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

से कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

0: कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ।

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। SH बिहारी की बोल थे ओपी नैयर की तर्स। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

आशा भोसले के आवाज की इस खूबसूरती को कौन नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ एक तरह के गाने नहीं गाए, उनकी आवाज में शरारत, शोखी, रोमांस, दर्द, मस्ती और नजाकत की एक अनोखी अदा है। आज उनके जन्मतिथि पर उन्हें सादर नमन। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था, और अगला गाना आपको अब सुनवा रहे हैं।

आपको फिर से बता दें, वक्त फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें थी, शाही लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत था। ये गीत जो आप सुन रहे हैं इसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं।

0: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। यादों की बारात फिल्म का ये गीत आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। और इसी गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
3: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
4: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा

0: वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि

0: प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी

0: कर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा।

0: इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: त्रिवेणी

8 सितंबर का दिन दुनिया में बड़ा मायने रखता है। इस दिन होता है विश्व साक्षरता दिवस। दरअसल विश्व साक्षरता दिवस आज से नहीं बल्कि सन 1966 से मनाया जा रहा है। 1965 में ईरान के तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व साक्षरता पर विचार किया गया और 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने ये ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि दुनिया के 127 देशों में से 101 देशों में साक्षरता एक समस्या बनी हुई है। भारत का अगर हम आकलन करें तो जो आंकड़े मिलते हैं वो ये बताते हैं कि 1947 में हमारी साक्षरता 12% थी और 2011 का आकलन ये बताता है कि हमारी साक्षरता की दर 74% तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये 100% तक क्यों नहीं पहुंची है? वो कौन से 25% लोग हैं जो अभी भी लिखने पढ़ने की दुनिया से दूर हैं?

0: राजा बेटा बन।
1: सवाल ये है कि साक्षरता की दर हमारे देश में 100% क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत वर्षों से, बल्कि कहा जाए कि कई दशकों से अभियान चलाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को कम से कम साक्षर बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आती और बदलती चली जा रही है, उसमें केवल साक्षर होने से अब काम नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी की साक्षरता बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। जाहिर है कि अब चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें अपने देश की आबादी को साक्षर भी बनाना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बादूर।
0: बन के बाहर।

0: क्या होता है?
1: तीतर।
0: जगदीश।

पूरी दुनिया में 77.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो साक्षरता से दूर हैं। बच्चों का भी यही हाल है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह एक तो आर्थिक विषमता है, दूसरी तरफ जागरूकता की कमी, और तीसरा भौगोलिक रूप से बहुत मुश्किल इलाके जहां स्कूल नहीं है या बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनसे बहुत दूर हैं। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत जोरदार तरीके से कोशिशें चल रही हैं। देश के कोने कोने में, सुदूर अंचलों और गांवों में स्कूल हैं, शिक्षा

कर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए दोपहर का भोजन तक स्कूल में ही दिया जाता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर है कि जब हर उम्र के लोग साक्षर होंगे, शिक्षा से नाता जोड़ेंगे, तो उनके पर खुलेंगे, वो ऊंचे आसमानों में उड़ने के लिए तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है कि उनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क

0: करें।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
4: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत कार्यक्रम की शुरुआत में।

0: बाजीराव मस्ताने फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा ने इस गीत को लिखा था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है।

महापात्रा और रविंद्र उपाध्याय की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था और तलाश फिल्म का गीत आपने अभी सुना। समारा फिल्म का ये गीत है के लक्ष्मी मोहन की आवाज़ें हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

अरिजीत सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत

ने इस गीत की धुन बनाई थी। महान पार्श्व गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म दिवस जयंती है। महान गायक, गीतकार, संगीतकार और असम की खूबसूरत सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें, सुनना न भूलिएगा आज की फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर सुनेगा, जो केंद्रित है महान गायक भूपेन हजारिका पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम।

0: उनका सफर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुन,
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत, आप सुन रहे थे वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
1: जी।
2: सब सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से।

0: उन्होंने लिया है, जैसे सुजाता
1: जी
0: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-44444 पर।
3: अरोड़ा प्लाईवुड,
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

हिचकी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे, राजशेखर ने से लिखा था और जैस्लिन रॉयल का संगीत था। आज राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, हर साल 8 सितंबर को।

हम सभी जानते हैं साक्षरता का सामान्य अर्थ पढ़ना लिखना और जानना। पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने और बहुत सारे कार्य करने योग्य बन जाता है। लेकिन सही अर्थों में जानना तब होता है जब हम ज्ञान और विवेक यानी सही गलत की हमें पहचान होती है। जो लोग साक्षर नहीं हैं उन्हें जीवन में कई तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। और आजकल तो पढ़ने लिखने के साथ साथ संवाद करना, टेक्नोलॉजी और तमाम उपकरणों का ज्ञान भी साक्षरता में शामिल हो गया है। यानी सबका ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितने की पढ़ाई लिखाई। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पढ़ना लिखना तो सामान्य प्रक्रिया है जो सभी के लिए जरूरी है। और जानने से तात्पर्य विवेक होना, ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना, उचित अनुचित की पहचान होना, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

0: লেখায়। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पढ़ना लिखना तो सामान्य प्रक्रिया है जो सभी के लिए ज़रूरी है, और जानने से तात्पर्य विवेक होना, ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना, उचित अनुचित की पहचान होना, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों को साक्षर बनाना है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी, या उनकी पढ़ाई में कोई आर्थिक परेशानी आई या कोई और परेशानी आई, उन सब की हमें मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का यह भी उद्देश्य है कि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने और समझने का अवसर प्राप्त कराया जाए, महिलाओं और वंचित वर्गों को साक्षर बनाकर आत्मनिर्भर बनाना, ये भी एक उद्देश्य। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों की येन केन प्रकारेण मदद करें जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। और आज की ज़रूरत है मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और डिजिटल भुगतान, और ये सभी आज की ज़रूरत है। इन सब जैसी ज़रूरी चीज़ों को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और इस दृष्टिकोण से ताकि उनमें हीन भावना ना आए, ऐसे भाव से हमें सबको बताना चाहिए और जिस भी प्रकार से मदद की जा सके करना चाहिए।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन

रट्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था। साथियों, साक्षरता का अर्थ केवल ये नहीं कि अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लें या पढ़ाई कर लें, किताबें पढ़ लें, उसे अपने जीवन में सही मायने में उतारना ही साक्षरता सही मायने में सिद्ध होता है। अब धुरंधर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

0: परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
0: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
0: Gems of India Challenge.

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं गोपी सुंदर और शिप्पा दा की, श्रीप्रदा की आवाजें थीं, और अमिताभ भट्टाचार्य के ये बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। अपनी जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पार्श्व गायिका आशा भोसले का आज जन्मदिन है। सुरों की मल्लिका, जिन्होंने हर भाव को संगीत में व्यक्त किया, एक ऐसी आवाज जिसने 7 दशकों तक संगीत को संवारा, उनके जन्म दिवस पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें कि आशा भोसले के बारे में विस्तार से जानकारी सुनेगा रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आशा भोसले पर। सुनना न भूलेगा। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं बेगम जान फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है कौसर मुनीर के बोल हैं अनु मलिक का संगीत।

0: अनु मलिक के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। जब उन्होंने ये गीत गाया तो उस समय उनकी उम्र यानी कि उस उम्र में ये गाना बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इस गाने में जिस संजीदगी और सुरीली आवाज़ के साथ इसे बड़ी ही गहरी और भावपूर्ण से इस गीत को गाया है, इस गीत ने सभी दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये गीत दर्द और अकेलेपन को बयां करता है और ये बहुत ही सुंदर सा गीत अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, आज का अखबार।
1: आज का अखबार।
5: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहते हैं, अखबारों से ली गई जानकारी आपसे शेयर करते हैं और साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करते हैं।

तो आज जिस सबसे पहले आज के दिन की ही बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। भाई हम सबको इसकी शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना हमारे जीवन में किस कदर एक अलग जगह रखता है और हमें दुनिया में चलने बैठने सोचने समझने जानने की क्षमता देता है। ये आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये हमें समझाता है कि जीवन में पढ़ना लिखना साक्षर होना कितना आवश्यक है, और इससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं, सोचने समझने की क्षमता पैदा करते हैं, आसपास की दुनिया को जानते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। तो अगर हम अपने शहर की बात करें चंडीगढ़ की, तो अच्छी खबर है भाई इस मामले में, 93.7 से बढ़कर अब जो हमारे शहर की साक्षरता दर है ना, वो 99.93% हो गई है, और महिलाओं की साक्षरता भी इस मामले में पीछे नहीं है, 99.89%। ये है पढ़ने लिखने की स्थिति हमारे शहर की, ये बहुत अच्छी बात है भाई। अंगूठे से हस्ताक्षर तक आज की अखबार ये लिखती है, चंडीगढ़ ने लिखी साक्षरता की नई कहानी। और हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उल्लास कार्यक्रम, इसने वाकई जीवन में उल्लास भर दिया है, उमंग भर दी है, इसने पूरी तरह से शहर की जो है तस्वीर बदल दी है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने उन लोगों को पढ़ाई से जोड़ने का काम किया जो कभी स्कूल नहीं जा पाए थे किसी भी कारणवश। शहर में करीब 15,000 लोगों ने इस पहल के तहत परीक्षा दी, 15,000 लोगों ने। इनमें बड़ी उम्र के लोग भी शामिल थे जिन्होंने बच्चों की तरह फिर से किताब और कॉपी को उठाया, पढ़ाई के साथ मोबाइल चलाने और डिजिटल कामों की जानकारी मिलने से भी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। इसका असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ नजर आ रहा है, ये कितनी अच्छी बात है, और चंडीगढ़ वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भाई आज के दिन। और अब हम आपको बताएं कि देश में जो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में बताएं। इनमें सबसे पहले मिजोरम है, गोवा दूसरे स्थान पर है, त्रिपुरा तीसरे, हिमाचल प्रदेश चौथे, सिक्किम पांचवें और चंडीगढ़ छठे स्थान पर है। वहीं पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख पहले और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है, लेकिन अपने शहर में चंडीगढ़ अव्वल रहा है। अब जो प्रतिशत है साक्षरता का हमारे यहां, वो 99.93% है, यानी पहले से बढ़ा है, तो अच्छी बात है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो जानेंगे समझेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, अपने विवेक से काम कैसे लेना है। बहुत कुछ आसपास चलता है, सारा दिन चलता है, उस सब को समझने के लिए जानने के लिए हमें पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों पढ़ने लिखने से हम अपने मन की बात को समझा पाते हैं, अपने शब्द दे पाते हैं, उनमें कुछ जोड़ सकते हैं, और मन की बात को हम कागज पर उकेर भी सकते हैं पढ़ने लिखने से। तो आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर ये आप सुनिश्चित कीजिए कि अपने आसपास कोई भी बिना पढ़े लिखे ना रहे।

वाकई दोस्तों, शहर में साक्षरता की हवाएं सरासर बह रही हैं और शहर की हवा भाई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सातवें स्थान पर रही है। यानी जो हमारा शहर है चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सातवें स्थान पर है। ये भी मुबारकबाद है हम सबको भाई इस मामले में। मार्च से ज्यादातर दिनों ग्रीन जोन में रहा AQI, 187 अंकों के साथ ठाणे और राजकोट के साथ साझा किया सातवां स्थान हमारे शहर चंडीगढ़ ने। इस बार सर्वेक्षण में केवल दोस्तों शहरों की रैंकिंग ही नहीं बल्कि वार्ड स्तर पर भी प्रदर्शन दर्ज किया गया। यानी अगर चंडीगढ़ शहर की स्वच्छता की बात हुई, वायु सर्वेक्षण की बात हुई, तो उसमें केवल शहर की नहीं वार्ड स्तर पर भी किस तरह से प्रदर्शन रहा ये भी शामिल किया गया। राज्य स्तरीय वार्ड पुरस्कारों की सूची में चंडीगढ़ के 3 वार्ड शामिल हुए हैं। 30,000 से अधिक आबादी वाली श्रेणी में वार्ड 12 को जगह मिली है। वहीं 10,000 से 30,000 आबादी वाले श्रेणी में वार्ड 2 और वार्ड 23 शामिल हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के वार्ड पुरस्कारों में चंडीगढ़ का कोई वार्ड टॉप 3 में जगह नहीं बना सका। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वार्ड्स ने अपने इलाकों के अच्छा काम किया है और ये करते रहना चाहिए। 187 अंकों के साथ चंडीगढ़ सातवें स्थान पर रहा, जबकि अहमदाबाद, विजयवाड़ा 186 अंक लेकर, गाजियाबाद और नवी मुंबई 184 लेकर नौवें तथा नागपुर 183.8 अंक के साथ दसवें स्थान पर रहा। शहर और वार्ड दोनों स्तरों पर चंडीगढ़ की उपलब्धियों को सर्वेक्षण में दर्ज किया गया है और जो मौजूदा हमारी एयर क्वालिटी है वो राहत देने वाली है। रैंकिंग के साथ शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी रिकॉर्ड भी राहत देने वाला है। मार्च से अब तक ज़्यादातर दिनों में AQI ग्रीन जोन में रहा और सोमवार को ये 41 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ। तो शहर जो है हमारा, उसकी साक्षरता और हवा दोनों ही टॉप पर हैं भाई। इसके लिए हम सभी जो हैं प्रयासों को मुबारकबाद देते हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बड़े शहर इस मामले में पीछे रहे। फरीदाबाद को जगह मिली है, वार्ड स्तर पर भी आगे है फरीदाबाद, और रैंकिंग में इंदौर पीछे है वायु सर्वेक्षण में, सफाई के मामले में नहीं, वायु सर्वेक्षण के मामले में। लखनऊ इस मामले में अव्वल

रहा है इस बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, जो है पीछे रहा है वो रहा है हमारा हिमाचल। हिमाचल की वादियाँ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पीछे रही हैं। तो कुल मिला के चंडीगढ़ हमारा सातवें स्थान पर। तो इसी तरह से यहाँ की हवाएं जो हैं स्वच्छ रहें, महकती रहें, सबको स्वास्थ्य प्रदान करती रहें, इसके लिए हमें अपने अपने स्तर पर काम करते रहना होगा।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
3: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
4: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। आइए अब आपको दोस्तों जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में बता दें। आपको मालूम है ना, अपने ज़िले की कहानी, अपनी ज़बानी और अपनी प्रविष्टियाँ भेजने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 तक है। इसमें आपको क्या करना है कि अपने शहर, गांव या ज़िले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद

करना है और बन जाना है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा। और इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है और इसे सबमिट कर देना है। देखिए आपको करना क्या है कि माई वेव्स पर जाकर MYWAVES इस पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना है, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी जो है वीडियो अपलोड कर देनी है। 1 से 3 मिनट की हो, इससे ज़्यादा नहीं। और चंडीगढ़ इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल है और जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2026। तो जुट जाइए किसी भी खास जगह, परंपरा और प्रतिभा या कहानी को कैद करने के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों रीजनल हेडलाइंस की तरफ। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की।

ओरिजिनल हेडलाइंस में सबसे पहले पंजाब चलते हैं, यानी अखबारों में पंजाब को लेकर जो हेडलाइंस हैं उन पर नजर दौड़ाते हैं। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने ली शपथ, बने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।

पंजाब सरकार की ओर से लिखित आश्वासन के बाद किसानों की घर वापसी, सातवें दिन धरना खत्म। अमृतसर हवाई अड्डे के पास से संदिग्ध ड्रोन, 7 उड़ानों का मार्ग बदला गया। आज पंजाब के सरकारी कर्मचारी कामकाज ठप कर सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। बकाया डीए और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर

पाकिस्तान से आए 15 पिस्तौल और 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। अखबार ये लिखती है कि एक साथ कई ड्रोन हमले की फिराक में है पाकिस्तान। पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई सम्मेलन में निवेशकों को पंजाब में निवेश करने का निमंत्रण दिया। पंजाब के बाद अब चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को 2000 रुपये जोखिम भत्ता मिलेगा। हड़ताल के 33वें दिन मुख्यमंत्री ने दी ये बड़ी राहत। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया। छात्रों को डिजिटल ताकत मिली। 1.80 आय वाली महिलाओं को 2100 रुपए और 5,00,000 विद्यार्थियों को टैबलेट देगी सरकार। 17 सितंबर से भाजपा का सेवा संकल्प अभियान। सूरजकुंड में जनसेवक महाकुंभ। और बूथ मजबूत कर महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगी हरियाणा कांग्रेस।

हिमाचल से जुड़ी खबरें हम आपसे शेयर करते हैं। हिमाचल के CBSE स्कूलों के शिक्षकों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड। छुक छुक रेलगाड़ी फिर अपने ट्रैक पर, फिलहाल शिमला धर्मपुर तक आप इसका आनंद ले सकते हैं। हिमाचल सरकार विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को देगी MPA। हिमाचल की सांसद कंगना रनौत ने सांसद निधि के तहत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए अधिकारियों को। और हिमाचल की स्वच्छ हवा पर प्रदूषण का ग्रहण लगा है, रैंकिंग में पिछड़े देवभूमि के शहर, ये लिखती है आज की अखबार। और हिमाचल के मौसम के बारे में बात करें, हिमाचल में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट है।

0: शिमला में 69 सड़कों पर आवाजाही ठप है। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। और दोस्तों, आज 8 सितंबर है, तो आज हम सब की चहेती हरमन प्यारी, हर दिल पर राज करने वाली आशा भोसले जी का जन्मदिन है। तो सभी चाहने वालों को हम शुभकामनाएं देते हैं और उनकी मीठी तान हमेशा हमारे दिलों को महकाती रहेगी, लुभाती रहेगी।
1: अरे अरे अरे अरे

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। चंडीगढ़ में बारिश थमी, पारा चढ़ा, उमस ने फिर बढ़ाई बेचैनी, हवा ने बढ़ाई रैंक, शहर की हवा ने बढ़ाई रैंक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में चंडीगढ़ 7वें स्थान पर। चंडीगढ़ के अस्पतालों में मरीज देखभाल भत्ता 25% बढ़ाया गया, 8,000 कर्मचारियों को मिलेगा एरियर्स। अंगूठे से हस्ताक्षर तक, चंडीगढ़ ने लिखी साक्षरता की नई कहानी, 93.7 से बढ़कर 99.93% हुई साक्षरता दर। डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा AI, इलाज को बनाएगा और बेहतर, ये कहा प्रोफेसर अजीत कुमार ने, जो BH

यू के कुलपति हैं। पीजीआई के 63वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने ये बात कही। 14 सितंबर को चतुर्थी के साथ ब्रह्म योग का संयोग सुबह 11:04 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म योग में गणपति पूजन से बुद्धि विवेक और समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद। चंडीगढ़ सरोवर पथ पर रिकार्पेटिंग 14 सितंबर तक, एक तरफ सड़क रहेगी बंद। और सेक्टर 26 मंडी में वाहन खड़े करने पर सितंबर से देना पड़ेगा शुल्क, चंडीगढ़ में 9 से 11 सितंबर तक चलेगा एकल अभिनव रंगमंच उत्सव। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां। आज के स्थानीय समाचार पत्रों की अब बारी फिर से म्यूजिकल ट्रैक की।

0: तो साथियों, ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम आज के लिए। अब जाने से पहले आपसे यही कहेंगे कि खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने आसपास का ख्याल भी रखते जाएं। अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अभी आपने आज का अखबार कार्यक्रम सुना। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए। बस अब से कुछ ही पलों में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।

0: कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार को और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघे ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉक्टर यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित ना रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और खेलों में अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेंगी, भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया से और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम इराक से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम सफर सुरीला सा।
3: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
4: अब दर्द ना सहो, तुम खुल के मुस्कुराओ, बवासीर के दर्द से

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अब प्रस्तुत है फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सफर सुरीला सा। श्रोताओं, आज है हम सभी की चहेती सुरीली गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिन। तो सबसे पहले जो गीत हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे हमने लिया है फिल्म

अच्छे हम सभी की चहेती सुरीली गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिन। तो सबसे पहले जो गीत हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया है उसे हमने लिया है फिल्म बातों बातों में से। आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत।

0: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: कार्यक्रम सफर सुरीला सा इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ से FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं दिल पड़ोसी है इस एल्बम से आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: कार्यक्रम सफर सुरीला सा के बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
0: आइए अब सुनते हैं सागर फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सफर सुरीला सा, और आज है आशा भोसले जी का जन्मदिन, तो इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं उन्हीं के गाए हुए कुछ गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म एतवार का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह ने।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। दोस्तों, कभी न भूलने वाली आवाज, वो अनोखा अद्भुत प्यारा अंदाज, हर किस्म हर मूड के गीत गाने वाली आशा जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गीत हमेशा हमारे साथ, हमारे हर एहसास में बने रहेंगे। चलिए अब सुनते हैं आशा और उनकी प्यारी दीदी, हम सब की लता दीदी के साथ जुगलबंदी में ये गीत। फिल्म का नाम है उत्सव।

दोस्तों, आशा जी ने हर विधा के गीत गाए, हर अंदाज में गीत गाए। भजन हो या गजल, कैबरे हो या उदास गीत, हर अंदाज उन पर जचता था और उनकी आवाज ने कई अभिनेत्रियों को पहचान भी दिलाई। विलक्षण अंदाज और आवाज, उन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भी कई भाषाओं में गीत गाए। अप्रस्तुत है उन्हीं का गाया पंजाबी भाषा में ये गीत। फिल्म का नाम है मन जीते जग जीत।

आशा जी को अनेक नमन, वो जहाँ भी हों लेकिन हमारे दिल में यहाँ हमेशा बसती रहेंगी। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सफर सुरीला सा अब समाप्त होता है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुरीला सा। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-444-444 पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओ, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हिप फ्रैक्चर पर पीजे के डॉक्टर संजय बड़ाड़ा से अनिल पुंज की बातचीत।
2: एफएम लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
3: प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़, डॉक्टर संजय बद्धादा। आज डॉक्टर संजय हमें हिप फ्रैक्चर के बारे में जानकारी देंगे, यानी कुल्हे की हड्डी के बारे में जानकारी देंगे कि ये क्यों टूटती है, इसकी वजह क्या है और किस तरह से इसका निवारण हो सकता है। इन तमाम बातों को लेकर रोशनी डालेंगे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: हमने जब जब भी इस प्रोग्राम में आपको बुलाया है, आप चले आए हैं, इसके लिए हम आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं।
4: सबसे पहले तो पुन साहब धन्यवाद, मुझे

0: विविध भारती में बुलाने के लिए। विविध भारती मेरे लिए अपना एक दूसरा घर जैसा है पीजीआई के बाद, और पीजीआई के सारे डॉक्टर्स बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं
1: जी,
0: लोगों के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए।
1: और आज जिस विषय को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे वो है हिप फ्रैक्चर के बारे में। जब किसी को इस तरह की समस्या हो तो वो जानता है
0: बिल्कुल
1: कि किस स्थिति से वो गुजर रहा है। आप हमें ये बताइए कि हिप फ्रैक्चर क्यों होता है, इसका कारण क्या है?
0: और आपने जो ये सवाल पूछा कि कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर या हिप फ्रैक्चर, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हिप फ्रैक्चर या कूल्हे की हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है उसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो हमारे ऑर्थोपेडिक कलीग्स करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ। लेकिन उससे कैसे बच सकते हैं और अगर फ्रैक्चर हो जाए तो सर्जरी के बाद क्या इलाज करना है उसके बारे में हम लोग अच्छे से आपको बता सकते हैं।
1: यानी ऑपरेशन जो है वो आपका फील्ड नहीं है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उसे किस तरह से संभालना है
0: बिल्कुल
1: ऑपरेशन होने के बाद भी,
0: या
1: और
0: और
1: उसको टूटने से बचाना कैसे है,
0: बिल्कुल ये दोनों
1: उस
0: चीज़ों
1: पर आप
0: में
1: काम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल ये प्रोग्राम इसलिए भी हमने इंटरेस्ट में लिया कि अभी पीजीआई को एक बहुत बड़ा ग्रांट मिला है हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर में, क्योंकि हमने एक स्टडी करी थी करीब 7-8 साल पहले। उसमें हमने ये देखा कि जो हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर के जो पेशेंट्स हैं, श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपनी हाइट से कम हाइट से गिर जाए और फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे अगर आपका लंबाई 6 फीट है, आप 6 फीट की जगह 5 फीट से गिर जाए, आपको फ्रैक्चर हो जाए, तो आपको बोलेंगे ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर।
1: जी
0: तो ये कॉमन हमारी डे टू डे में होता है, बाथरूम में जो स्लिप हो जाते हैं वो बहुत कॉमन होता है, या घर के अंदर फर्श पे कि चीज़ इंटेंगल हो गई, गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में जो फ्रैक्चर होता है उसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं।
1: जी
0: और ऐसा देखा गया कि ये जो फ्रैक्चर होते हैं, जब आपकी बोन डेंसिटी होती है वो अगर कम हो जाती है तो उसकी वजह से पर्सन जब अपनी हाइट से कम हाइट पे गिरे उनको फ्रैक्चर हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमने एक स्टडी करी थी करीब 8-10 साल पहले, उसमें चंडीगढ़ ट्राई सिटी के करीब 300 पेशेंट्स को हम फॉलोअप किया जिनका कि हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो गया था।
1: जी
0: तो हम उनको 1 साल तक फॉलोअप किया तो वो एक बहुत ही डरावनी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिली कि उसमें पहले 3 महीने के अंत में करीब करीब 8% लोगों की डेथ हो गई,
1: अरे अरे अरे
0: पहले 3 महीने में, 6 महीने के अंदर करीब करीब 10% लोगों की, और 1 साल के एंड में लगभग 25% लोगों की डेथ हो गई जिनको हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हुआ,
1: कम ऊंचाई से जो गिरे
0: कम
1: हैं।
0: ऊंचाई से जो गिरे।
1: हाँ
0: तो इसका मतलब एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, क्योंकि अगर आप आम जनरली हम देखते हैं कि किसी घर में आस पड़ोस में किसी को कैंसर की बीमारी हो तो पूरे मोहल्ले वाले कह रहे उनको कैंसर हो गया, ये हो गया, हो गया, लेकिन किसी को हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो गया तो कोई सुनता नहीं, अरे हो गया होगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इस बीमारी की इतनी गंभीरता का आइडिया नहीं है, जबकि ये उतना ही गंभीर है, किसी कैंसर से कम नहीं है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में एक अवेयरनेस जगाना है कि हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर एक सीरियस बीमारी है।
1: जी बिल्कुल, आपने रोशनी डाली है। आमतौर से इसके बारे में उस तरह से बात नहीं होती।
0: आपने कभी सुना भी होगा कि अपने घर परिवार में या आसपास कोई जैसे एल्डरली माता जी, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होता है,
1: जी
0: तो जैसे बाथरूम में स्लिप हो गए तो बहुत सारे लोगों को पता है कि बाथरूम में स्लिप हो गए फ्रैक्चर, कूल्हे की हड्डी खिसक गई तो
1: जी
0: चांस काफ़ी ख़राब है
1: जी
0: मतलब
1: जी जी
0: जीने के। तो
1: उठना चलना सब
0: हाँ
1: कुछ
0: सब
1: मुश्किल
0: कुछ
1: है,
0: मुश्किल हो जाता है।
1: और सबसे
0: तो
1: बड़ी बात है कि बाथरूम जाना मुश्किल है।
0: बिल्कुल, तो लोगों को सब पता भी है
1: हाँ,
0: लेकिन फिर भी इतना सीरियसनेस नहीं है।
1: अभी मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि कारण क्या है
0: अच्छा कारण
1: हिप
0: क्या है?
1: फ्रैक्चर का। ये
0: बिल्कुल
1: तो आपने स्थिति बताई कि ऐसा होता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: वजह क्या है कि बाथरूम में ही लोग ज्यादा गिरते हैं
0: हाँ
1: और गिरने के बाद ही उन्हें हिप फ्रैक्चर बताया जाता है।
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छा, और एक ही इसका बहुत साइंटिफिक आंसर भी है। अगर आपने 45 साल की महिला को देखा होगा और उनके गिरने से जो फ्रैक्चर होता है जनरली उनके रिस्ट का फ्रैक्चर होता है,
1: जी,
0: क्योंकि जब वो गिरते हैं तो अपने हाथ लंबे कर देते हैं
1: नेचुरली अपने आप को बचाने के लिए।
0: बचाने के लिए,
1: हाँ
0: ठीक है। तो वो 45 साल की उम्र के अंदर उनको ये रिफ्लेक्सेस रहते हैं कि वो हाथ के बल गिरते हैं तो
1: जी
0: हाथ की हड्डी टूटती है, लेकिन यही अगर 60-65 साल की उम्र में पर्सन गिरता है बाथरूम में तो उसके रिफ्लेक्सेस ऐसे नहीं होते हैं और वो सीधा अपने कूल्हे के बल गिर जाता है, और इसकी वजह से उनके कूल्हे का फ्रैक्चर ज़्यादा
1: ज्यादा होता
0: कॉमन
1: है।
0: होता है। तो
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: साइंटिफिक रीज़न है इसका कि कूल्हे का फ्रैक्चर जो 65-60 साल की उम्र में बाथरूम में गिरने से क्यों ज़्यादा होता है।
1: तो जो लोग 65 साल से ज्यादा हैं
0: बिल्कुल
1: वही क्यों सुनने को मिलता है कि वो अपने बाथरूम में गिर गए
0: या
1: और गिरने के बाद उनकी हड्डी टूट गई,
0: बिल्कुल
1: कूल्हा
0: उसका

0: उड़ गए।
1: उसका एक रीज़न, दो तीन रीज़न है उसके, क्योंकि एक तो यंग पर्सन होता है तो वो साइड में किसी चीज़ को पकड़ लेता है, कर लेता है, तो गिरने से पहले बच जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती, हमारे रिफ्लेक्सेस उतने शार्प नहीं होते हैं कि हम रेस्पॉन्स उतना नहीं ले पाते। जैसे पैर फिसल गया तो रेस्पॉन्स 65 साल 70 साल में इतना आएगा नहीं,
0: वो रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे।
1: हाँ, वो रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे तो गिर जाएंगे, और गिरेंगे तो कूले की चोट जाएगा, तो उसकी वजह से वहां का फ्रैक्चर हो जाता है।
0: देखने के बाद डॉक्टर साहब के, जब हम गिरते हैं तो कुल्हे पे ही चोट लगती है।
1: बिल्कुल, बाथरूम में गिरते हैं जो लोग, क्योंकि एल्डरली लोग गिरते हैं और रिफ्लेक्स नहीं होते, इसकी वजह से होता है। तो इसका रीजन है ये
0: रीजन आपने बताया। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये रीजन ना हो, इसको कैसे रोका जा सकता है?
1: बहुत अच्छा सवाल, और इस पे मैं पूरा एक घंटे भी बात कर सकता, किताब
0: लिखी है। एक घंटे का प्रोग्राम नहीं है।
1: क्योंकि मैंने किताब लिखी है ऑस्टियोपोरोसिस पे हिंदी में, उसके अंदर सारी पिक्चर्स बना के बताई। तो मैं आपको जैसे घर के तरीका बताता हूँ। आप जनरली क्या होता है, बेडरूम होता है, बेडरूम से बंदा उठता रात को टॉयलेट के लिए
0: जी,
1: तो आपका रास्ता बेडरूम से टॉयलेट जाने का बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जैसे आजकल तो थैंक गॉड की टेलीफोन लैंडलाइन नहीं है, ऑलमोस्ट सब घर में खत्म ही हो गई है,

0: क्योंकि मैंने एक किताब लिखी है ऑस्टियोपोरोसिस पे हिंदी में, उसके अंदर सारी पिक्चर्स बना के बताई। तो मैं आपको जैसे घर के तरीका बताता हूँ। आप जनरली क्या होता है, बेडरूम होता है, बेडरूम से बंदा उठता रात को टॉयलेट के लिए
1: जी,
0: तो आपका रास्ता बेडरूम से टॉयलेट जाने का बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जैसे आजकल तो थैंक गॉड की टेलीफोन लैंडलाइन नहीं है, ऑलमोस्ट सब घर में खत्म ही हो गई है, नहीं तो पहले लैंडलाइन का तार अक्सर पड़ा रहता है इधर उधर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: और पर्सन गिर
1: जाते चांसेस होते थे वो,
0: ठीक है
1: जी।
0: दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि बाथरूम में जब आप घुसते हैं तो वो जो बाथरूम की जो लाइट होती है वो अक्सर लोग अंदर रख देते हैं बाहर स्विच रखने की जगह।
1: ये बहुत अच्छी चीज आप बता रहे हैं कि
0: स्विच हमेशा बाथरूम के बाहर होना चाहिए। जब आप एंटर करते हैं तो स्विच ऑन करें, लाइट ऑन करें, फिर अंदर जाएं।
1: रास्ता क्लियर होना चाहिए
0: बिल्कुल,
1: और स्विच जो है वो बाथरूम के बाहर होना चाहिए
0: बिल्कुल, ताकि आप जब एंटर करें तो लाइट दिखे आपको कि अंदर क्या है कोई चीज। फिर बाथरूम में जैसे घुसे तो बहुत बार क्या होता है कि और कोई पर्सन ने बाथरूम इस्तेमाल किया, उसने बाल्टी रास्ते में छोड़ दी, मग रास्ते में छोड़ दिया, साबुन फैला हुआ है या शैम्पू वहीं फर्श पे रखा हुआ है, तो वो उससे आपको ऐसे बिना अगर अंधेरे में घुसे तो आपको फिसलने का बहुत ज़्यादा चांस है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। कई बार ये होता है ना कि रात को हम भूल जाते हैं
0: बिल्कुल
1: कि हमने रास्ते में कुछ रख दिया था
0: बिल्कुल,
1: और लाइट ऑफ हो गई
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद आप खुद रात को उठे
0: भूल गए,
1: खुद ही भूल गए
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: कि रास्ते में कुछ रखा हुआ है,
0: वो भी एक कारण है
1: जी।
0: फिर उसके बाद में क्या होता है, हिंदुस्तान में हमारे बाथरूम में लाइट का एक हमारा एक आदत पड़ गया कि लाइट कम इस्तेमाल हो बाथरूम में, एक छोटा बल्ब लगाते हैं, जबकि ये नहीं लगाना चाहिए।
1: ज्यादा लाइट अच्छी नहीं लगती।
0: हाँ, कि अच्छी लाइट, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। मैंने कहा बहुत ज्यादा नहीं हो लेकिन प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि आपको सारा चीज ठीक से दिखे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट कारण होता है, जब हम बाथरूम में एंटर करते हैं तो अक्सर क्या होता है, बहुत ही पुरानी चप्पल इस्तेमाल करते हैं, जो चप्पल नीचे से पूरी घिस चुकी होती है,
1: फ्लैट
0: फ्लैट, तो उससे क्या होता है कि आपको फिसलने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए बाथरूम में हमेशा अच्छी नई प्रॉपर चप्पल रहना चाहिए,
1: जिसकी पकड़ हो,
0: पकड़ हो, ताकि अगर वो आपका कुछ फिसले तो भी आप एकदम गिरे ना
1: जी। डॉक्टर साहब रोकता हूँ आपको क्योंकि एक कॉलर ऑनलाइन है, अपनी बात को बाद में जारी रखें।
0: बिल्कुल।
1: प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी।
2: सर नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर वरिंदर सिंह बोल रहा हूँ खन्ना से।
1: जी वरिंदर जी, क्या हाल चाल है?
2: ठीक ठाक।
1: डॉक्टर संजय बदाधा हमारे साथ हैं।
2: हाँ जी सर।
1: हाँ, हिप फ्रैक्चर के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: सर नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: सर, एक मेरा क्वेश्चन ये है, और थायराइड की वजह से हड्डियाँ कमजोर होती हैं?
0: बिल्कुल, अगर थायराइड ज्यादा काम करे तो उसकी वजह से भी हड्डी कमजोर हो सकती है और उसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है, हालांकि उतना कॉमन नहीं है।
2: ठीक है सर। तो सर मैं 19 तरीक को पीजीए में आया था।
0: हाँ,
2: आप ही की ओपीडी में आया था सर। मेरा ना आपने थायराइड है 8, पहले मैं करवाया था, आपने मैं टेस्ट 2 बार करवा लिया, पहले आया था 11, फिर मैं पीजीए में करवाया 8 आया और टीपीओ आया 9। आपने बताया भी 3 महीने बाद दोबारा रिपीट करना।
0: बिल्कुल, हमारा जब तक वो कट ऑफ नहीं आ जाता है कि जिस पे दवाई शुरू करना, तो हम दवाई नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि थायराइड का दवाई जिंदगी भर चलता है, और अगर थायराइड की दवाई का जरूरत नहीं, अगर आप दवाई लेते हैं तो आपको फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है।
2: अच्छा सर, एक मैं ये अभी इसका कोई देसी इलाज कोई जिससे कम हो जाए, कोई परहेज?
1: वरिंदर जी देसी इलाज पीजीआई नहीं बताता।
2: ठीक है सर, ठीक है।
1: हाँ
2: सर, मेरा वजन तो 50।
0: अच्छा 50, फिर तो ठीक है, फिर तो इसको टेस्ट करके देखेंगे, ज्यादा आए तो दवाई शुरू करेंगे। ठीक है,
2: अच्छा, ओके, थैंक यू सर,
0: धन्यवाद।
1: वरिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और डॉक्टर संजय, आप हमें बता रहे थे कि क्या क्या होता है।
0: बिल्कुल, जो चप्पल का मैंने बताया कि पुराना घिसा चप्पल इस्तेमाल करने से उसमें फिसलने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा, बाथरूम के अंदर जाने के बाद में कभी चक्कर आ जाता है, कभी कभी ऐसा आ जाए, किसी को भी आ सकता है, खासतौर से रात को उठ करके अचानक जल्दी से उठ के चले जाते हैं, जल्दी भी रहती जाने की, और अगर आप तुरंत चले जाते हो कभी कभी ब्लड प्रेशर फॉल होने के वजह से भी चक्कर आ सकता है। तो आपका बाथरूम ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई चीज़ आप गिरे तो पकड़ सकते हैं बार या ऐसे कुछ, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं ताकि आप गिरेंगे नहीं,
1: गिरेंगे नहीं।
0: ये एक दूसरा सावधानी है। तीसरा सावधानी, अक्सर ये सेल देखा गया कि लोग बाग बाथरूम में नहाने के बाद वहीं कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं तो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी कपड़ा पहनने के लिए तो एक पैर ऊपर करना पड़ेगा, दोनों पैर तो कर नहीं सकते। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा मुश्किल भी होता है, और उसके वजह से भी आप बाथरूम में पूरा चांस है गिरने का। तो कभी भी बाथरूम में कपड़े ना पहने, उस बदन पहुंच ले बाहर आके आराम से बेड पे बैठ के कपड़े पहने, ताकि आपको उससे गिरने से आपका बचाव हो जाए,
1: बचाव, बाथरूम में हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है, बाहर आके आराम से बैठ के अपने कपड़े डाले जाए।
0: बिल्कुल,
1: जो आप ये कह रहे थे ना कि रात को उठकर हम जाते

0: ये एक और मेरे जहन में एक बात आई है कि जो उम्र दराज लोग हैं वो रात को उठते हैं तो तुरंत चल पड़ते हैं,
1: या तो
0: वहां भी
1: उस
0: गिरने के चांसेस होते हैं।
1: बिल्कुल उसका एक कारण ये भी होता है कि जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है खासतौर से पुरुषों में, और तो उसमें क्या होता है उनको जल्दी रहती भी है, और वो ऐसा होता है कि आप सोकर सो रहे थे 4 घंटे से एकदम उठे चल दिए, तो आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है वो पूरा एक इफेक्टिवली हुआ नहीं, और उसके पहले आपने उठ के चल पड़े,
0: हाँ, वो
1: तो आप
0: रवानगी नहीं हुई है और
1: यस यस
0: गिर
1: यस
0: गए इसी वजह से।
1: और
0: जी
1: कभी कभी कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी अचानक ब्लड प्रेशर कम करती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है। इसलिए जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि आपको रात को उठना है तो उठ के 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए बेड पे बैठ जाएं, बैठ के फिर बाथरूम की तरफ जाएं, तो उससे ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर फॉल होने के टाइम पे आप बाथरूम में नहीं होंगे, आप बेड पे ही होंगे, तब तक स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर आप जाएं, तो ये बहुत अच्छा
0: यानी
1: है।
0: एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आने के लिए
1: बिल्कुल
0: थोड़ा समय दें।
1: बिल्कुल ग्रेजुअली करें, सोए तो
0: हाँ
1: बैठ जाएं, बैठ के फिर जाएं, ऐसे नहीं कि आप सोते हुए और फटाफट तुरंत चले जाएंगे,
0: हाँ कई बार मजबूरी होती है, प्रेशर भी
1: तो वो
0: होता
1: तो
0: है,
1: है, वो है,
0: लेकिन दोनों चीजें
1: कोशिश
0: देखनी
1: करें।
0: पड़ती हैं।
1: बिल्कुल
0: आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों लोग गिरते हैं, उसकी वजह क्या होती है, और
1: बिल्कुल
0: बाथरूम के बारे में आपने बताया कि बाथरूम में खड़े होकर कपड़े ना डालें,
1: बिल्कुल
0: बैठ के डालें। और ये भी आपने बताया कि बाथरूम में कोई तेल गिरा है, कोई साबुन गिरा है, तो
1: शैम्पू गिरा है
0: बाहर
1: कुछ भी,
0: निकलने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाथरूम को आप प्रॉपरली ड्राई करके बाहर आए।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप जो भी उसको इस्तेमाल करा उसको क्लीन करके जाना चाहिए, क्योंकि जो बंदा नेक्स्ट आने वाला है उनको शायद पता ना हो, और या खुद ही एक कि आपके लिए इंडिविजुअल बाथरूम है तब भी आपको करके निकलना चाहिए।
0: अच्छा डॉक्टर संजय, हमें आप ये बताइए कि कौन सा जो फ्रैक्चर है वो कॉमन देखने को मिलता है?
1: सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर तो स्पाइन का होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन, लेकिन आम आदमी को या बहुत सारे डॉक्टर्स का भी ये आइडिया कि स्पाइन के फ्रैक्चर को फ्रैक्चर कंसिडर नहीं करते या नहीं सोचते हैं, वो केवल फ्रैक्चर जो लंबी हड्डियाँ होती हैं उनको टूटने को ही उनके फ्रैक्चर, तो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर तो स्पाइन का होता है, उस पर लोगों को पता नहीं रहता है, क्योंकि
0: अच्छा
1: कुछ जैसे हमारे OPD में लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं आप लंबाई नपवा के आओ, तो बोलते डॉक्टर साहब मैं तो 50-60 साल का, मुझे क्यों लंबाई नपवाना है।
0: अच्छा
1: पर ऐसा देखा गया है कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस स्पाइन का होता तो है उनका लंबाई कम हो जाता है,
0: जी,
1: तो वो एक इम्पोर्टेंट मार्कर है कि अगर आपका लंबाई कम हो रहा है सिग्निफिकेंटली तो आपको स्पाइन का ऑस्टियोपोरोसिस हो गया,
0: इस
1: और
0: शरीर के बहुत काम है सर, एक
1: सो
0: एक एक एक चीज की इतनी इतनी शाखाएं हैं।
1: भगवान ने जो ये
0: हाँ,
1: कंप्यूटर बनाया है बहुत ही अद्भुत अद्भुत अद्भुत है,
0: और
1: हम
0: सलाम आपको करते हैं कि आप इसको स्टडी करते हैं, फिर हमें राह दिखाते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और फिर अगर मरीज उसको प्रॉपरली फॉलो करें,
1: बिल्कुल
0: आपको भी लगता है कि हमारी मेहनत जो है कामयाब हुई।
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब फ्रैक्चर हो जाए, अब डॉक्टर के पास तो जब जाएंगे तब पहुंचेंगे ना,
1: बिल्कुल,
0: उससे पहले क्या करना है? कोई
1: तो
0: बाथरूम में गिर जाए तो हमें
1: या
0: उसको संभालना कैसे कि और स्थिति खराब ना हो?
1: तो सबसे पहले क्या होता है, अगर बाथरूम में गिरे तो जो फ्रैक्चर कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, तो एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि बाथरूम ऐसा होना चाहिए जो अंदर और बाहर दोनों से कैसे खुल सके, क्योंकि अगर आप बाथरूम में गिर गए खास तौर से उम्र दराज पर्सन, तो अगर आपने कुंडी लगा दी, और कुंडी भी आपके हाथ के लेवल पे होनी चाहिए, नहीं कि बहुत ऊपर, कि आप गिर गए तो उठ
0: अगर
1: के
0: गिर भी गए
1: उसको
0: तो उसे
1: खोल सकते
0: खोल
1: हैं।
0: पाए।
1: बिल्कुल
0: आमतौर से घरों में तो बुजुर्गों को ये कहा जाता है कि कुंडी
1: लगाए ना,
0: लगाए ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है,
0: हाँ
1: वो बिल्कुल अच्छा आइडिया है, लेकिन बहुत बार एप्रिहेंशन रहता है कि कोई आ जाएगा, खुला रह गया दरवाजा या कुछ आ जाएगा, तो वैसे रहता है, लेकिन उसको एक लेवल पे कि वो उसको कुंडी खोल सके, तो ये एक तो
0: जी जी जी
1: इम्पोर्टेंट।
0: जी
1: दूसरा उसके बाद में उनको बाथरूम से बाहर निकालता है, देख लें कोई सर में कोई चोट तो नहीं लगी है, बातचीत ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार जब गिरेंगे तो हम बात करें कूल्हे की हड्डी की, लेकिन मेरे न्यूरोलॉजी कलीग वो भी बात करेंगे या न्यूरोसर्जन
0: हाँ,
1: की
0: उस
1: भी
0: तरफ
1: हेड,
0: ध्यान नहीं जाता है कई
1: हाँ
0: बार।
1: तो हेड इंजरी
0: हाँ
1: तो नहीं हो गया, वो भी एक देख सकते हैं, और एक तुरंत डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। और आज की तारीख में ऐसा देखा गया कि जो हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जो होता है उसका जो सर्जरी होता है वो जितना जल्दी करें उसका आउटकम उतना बेहतर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि अरे 2 दिन हो गए अभी ले जाएंगे, 3 दिन हो गए अभी, तो ऐसे कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत
0: तुरंत
1: हॉस्पिटल
0: ले जाएं
1: तुरंत
0: जितनी
1: हॉस्पिटल
0: जल्दी संभव हो
1: बिल्कुल।
0: सकता है।
1: और
0: और
1: ऐसे
0: कहाँ लेके कहाँ जाना है?
1: हाँ लेके जाने के लिए ऑब्वियसली अगर आप कोई फ्रैक्चर हो गया है तो आपको एक ठीक ठाक लेवल के हॉस्पिटल में ही लेके जाने का फायदा है, क्योंकि बहुत छोटी जगह पे जाने का फायदा नहीं
0: नहीं,
1: होगा।
0: जाएंगे तो हम इमरजेंसी में जाएंगे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ
1: हाँ, तो इमरजेंसी में जाना, वहाँ के ट्रॉमा सेंटर में जाना है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, और

0: फिर वहाँ तुरंत वो एक्सरे करके देखेंगे कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हुआ है और उस फ्रैक्चर के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी, वो आपको डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे। अब जब ये फ्रैक्चर हो गया, उन्होंने सर्जरी कर दिया, उसके बाद हमारा रोल आ जाता है कि हमें क्या करना है ताकि फिर से फ्यूचर में फ्रैक्चर ना हो,
1: इसको संभालना कैसे है?
0: बिल्कुल। तो एक एक टर्म यूज होता है फ्रैक्चर लिएजन सर्विस, FLS।
1: FLS,
0: हाँ, FLS बोलते हैं उसको, फ्रैक्चर लिएजन सर्विस। तो फ्रैक्चर लिएजन सर्विस में क्या होता है कि कौन कौन लोग इस फ्रैक्चर को रोकने के लिए, फ्यूचर फ्रैक्चर को रोकने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसे नर्स हो गई, वो एजुकेट करेगी आपको कि कैसे फ्यूचर में ना गिरें। फिर आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए, वो आपको ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद में अगर आपको ICU केयर वगैरह ज़रूरत है तो एनेस्थीशिया वाले करेंगे, और जब आपका सर्जरी हो गया तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले क्या क्या दवाइयाँ देना कि आपका फिर से फ्रैक्चर ना होए,
1: ये सब आपका काम,
0: ये हमारा काम है।
1: अरे कमाल है।
0: और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारा ICMR का एक जो ग्रांट आया है, उस ग्रांट में हम इंडिया में जो लोगों को फ्रैक्चर हो रहे हैं उनको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर हो गया और उसके बाद फिर से फ्रैक्चर ना होए उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के सहयोग से और सहयोग से मिल करके।
1: जी, भारत सरकार की तरफ से,
0: भारत सरकार की तरफ से
1: ये ग्रांट दी गई है PGI को।
0: PGI को
1: जी, तो इसके बारे में हम और बात करेंगे आपसे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी को हिप फ्रैक्चर हो जाता है, क्या ये फ्रैक्चर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद, सर्जरी के बाद और आपकी गाइडेंस में वो ठीक हो जाता है?
0: बिल्कुल, अच्छा रिजल्ट रहता है अगर समय पे सर्जरी हो जाए और फिर से उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो उसके अंदर रिस्क काफ़ी कम हो जाती है।
1: अच्छा, जो दर्द होता है वो चला जाता है कि रहता है?
0: दर्द चला जाता है, दर्द तुरंत होता है फिर चला जाता है।
1: जी, अच्छा, इसके बाद आप पेशेंट को एक्सरसाइज भी बताते हैं?
0: बिल्कुल।
1: वो क्यों ज़रूरी होती हैं?
0: वो क्योंकि जैसे जनरली ऑस्टियोपोरोसिस हम बोले तो ऑस्टियो का मतलब होता बोन, पोरोसिस का मतलब पोरस हो गए, बोन खोखली हो गई, लेकिन उसके साथ जुड़े होते हैं मसल्स।
1: जी,
0: तो मसल्स का भी उतना ही रोल है आपकी हड्डी को मेंटेन करने के लिए,
1: इम्पॉर्टेंट रोल है।
0: बिल्कुल रोल है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज इसलिए बताते हैं ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत रहे। तो एक तो मांसपेशियां मजबूत रहेगी तो फिर से गिरने की संभावना कम रहेगी
1: जी।
0: एक, और दूसरा है कि मांसपेशियों के मजबूत रहने से आपकी हड्डी के अंदर जो हीलिंग का स्पीड भी अच्छा रहेगा
1: जी।
0: तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी बताते हैं। इसके अलावा है कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जोड़ जो होते हैं वो जुड़ने का संभावना रहता है, स्टिफ होने का संभावना रहता है, तो आप एक्सरसाइज से उसका भी आप हेल्प कर सकते हैं,
1: उनकी एक्टिविटी रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हिप फ्रैक्चर के बारे में दी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिप फ्रैक्चर को लेकर जब कोई सुनता है तो कहते हैं, अच्छा वो गिर गया, अच्छा कूल्हे पे चोट लगी है, अरे अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं?
0: बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, और ऐसा देखा गया है कि हिप फ्रैक्चर का अगर ठीक से केयर नहीं करे तो 90% लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम रह जाता है।
1: जी,
0: कुछ न कुछ प्रॉब्लम में।
1: अच्छा,
0: जैसे कि
1: कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्या होती हैं?
0: कुछ न कुछ प्रॉब्लम है कि आपको बिना सहारे के वो नहीं चल पाएंगे, आपको स्टिक लेके चलना पड़े, जैसे ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने कपड़े सारे ठीक से नहीं पहन सकें, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है,
1: प्रॉब्लम
0: हो गया। तो आप एक तरह से दूसरों के ऊपर में किसी न किसी फॉर्म में डिपेंडेंट हो सकते हैं।
1: अगर हम ये फॉलोअप करते हैं जो डॉक्टर हमें कहता है, तो ये सब परेशानी नहीं होती फिर बाद में?
0: ये सब होने की परेशानी काफ़ी कम हो जाती है
1: जी,
0: क्योंकि उस तरीके से काम करने से आपकी एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी सारी ठीक होती है, साथ साथ में आपका न्यूट्रिशन, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और अभी हम जब डाटा देख रहे हैं तो जितने भी पेशेंट हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर के PGIM है, सबका विटामिन डी लेवल लो है। तो अगर आप ध्यान से नहीं रखेंगे, विटामिन डी लेवल ठीक नहीं रहेगा तो और गिरने का संभावना बढ़ जाएगा।
1: तो किस उम्र में हमें अपना विटामिन जो है डी, तो डी को चेक करवा लेना चाहिए एक बार?
0: ऐसा
1: अब देखने में भला चंगा व्यक्ति लगता है,
0: ऐसा कोई पर्टिकुलर एज तो नहीं है कि कब विटामिन डी चेक करना चाहिए। विटामिन डी सभी लोगों
1: मतलब कब उसे लगे कि मुझे कुछ करवाना चाहिए?
0: अच्छा, ये तो जैसे कोई आपको कुछ बोन पेन हो रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कोई आपका जोड़ में टेढ़ापन आ रहा है पैर में, पर वो बहुत ही एडवांस स्टेज है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे कोई पेशेंट उस स्टेज का इंतज़ार करें तब विटामिन डी कर।
1: मतलब ऐसे कुछ बात दिमाग में आती है तो डॉक्टर को एक बार दिखा।
0: हाँ, बोन पेन से कि जैसे थकान

0: लग रही है या बहुत
1: सुबह उठते मांसपेशियों में अकड़न
0: है या टायर्डनेस है, वो लगातार पूरे दिन भर बनी रह रही है, तो एक विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक लक्षण हो सकता है।
1: तो क्या हमें विटामिन डी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए एज ए सप्लीमेंट?
0: वो डाइट के अंदर तो जरूर रहना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली डाइट के अंदर जो वेजिटेरियन लोगों की डाइट में विटामिन डी बहुत कम होता है,
1: वो है ही नहीं, नजर नहीं
0: के बराबर, जैसे मशरूम वगैरह में होता है या थोड़ा बहुत जो फोर्टिफाइड मिल्क आता है या जिसके अंदर वो विटामिन डी डालते हैं तो उसमें विटामिन डी है, बाकी जो रूटीन अपन जो दूध लेते हैं जो
1: उसमें नहीं है,
0: उसमें विटामिन डी न के बराबर है, ऐसे दही में भी न के बराबर है। तो केवल
1: तो हमें मिलता कहाँ से डॉक्टर साहब?
0: भगवान की दया से, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो अपने आपको धूप में जितना एक्सपोज कर सकते हैं टाइम निकाल के जरूर करें, उससे आपको विटामिन डी काफी मात्रा में मिलेगा। और हिंदुस्तान में तो विटामिन
1: धूप में लोग चलते नहीं है क्योंकि अब गाड़ियां हैं,
0: बिल्कुल
1: बसेज हैं, मतलब आने जाने के यातायात के साधन बहुत हैं।
0: और ये चलते भी तो लोग बाग जो स्कूटर मोटरसाइकिल पे चलते हैं खास तौर से गर्ल्स वगैरह, वो सब अपने आपको कवर कर लेते हैं, आपको कोई भी
1: हेलमेट डालना भी जरूरी है,
0: हेलमेट डालना भी जरूरी है, काला चश्मा भी लगाते हैं।
1: गर्मी के मौसम में तो सूरज को देखना भी अपने आपको बड़ा मुश्किल लगता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सर्दी में ही हम कोशिश कर सकते हैं
0: बिल्कुल
1: कि सनलाइट लें विटामिन डी के लिए, तो बाकी मौसम में क्या करें?
0: बाकी मौसम के लिए मैं ये बोलूंगा विटामिन डी ले लें, सप्लीमेंट ले
1: डॉक्टर से पूछ के,
0: बिल्कुल
1: जी। तो डॉक्टर साहब अब आप हमें ये बताइए कि आमतौर से बात होती है हार्ट अटैक के बारे में, अब बोन अटैक के बारे में भी सुनने को मिलता है, ये बोन अटैक क्या है?
0: सो हमारे ऑर्थोपेडिक कलीग्स ने सोचा कि लोग बाग हार्ट अटैक से एकदम कि भाई ऐसा हो गया, एकदम तुरंत से अवेयरनेस आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो ऑर्थोपेडिक्स कलीग्स कहते बोन अटैक हो गया, तो बोन अटैक का मतलब एक तरह से फ्रैक्चर हो गया, वो एक बोन अटैक कह सकते हैं आप।
1: जी जी जी।
0: तो वो जस्ट टू इंक्रीज द अवेयरनेस,
1: उसको भी ट्रीट उसी तरह से किया
0: बिल्कुल
1: जाए,
0: उसको भी ऐसे सीरियसली लेना चाहिए
1: जैसे हार्ट अटैक को सीरियसली लेते हैं।
0: बिल्कुल, हार्ट अटैक में ये हो सकता है अगर सीरियसली ले तो घंटों का ही प्रोग्राम,
1: एक घंटे की बात होती,
0: हाँ घंटा या दिन हो सकता है, लेकिन बोन अटैक में भी आपको अगर बहुत डिले करें तो आपको उसमें नुकसान होने का संभावना ज्यादा है।
1: अच्छा, जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, बोन डेंसिटी जिनकी कम होती है, उन्हें ये हड्डी की जो टूटने की शिकायत ज़्यादा रहती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उन्हें ध्यान किस तरह से रखना चाहिए?
0: उन्हें ध्यान किस तरह से रखना चाहिए कि जैसे एक गाइडलाइन है कि आपका महिलाओं में महीना बंद होने के विद इन 3 to 5 years अपना बोन डेंसिटी चेक कराना चाहिए, पुरुषों में जनरली 60 साल या 65 साल पर अपना बोन डेंसिटी रूटीन चेक कराना चाहिए, अगर वो कम है तो उसके लिए फिर आपको दवाई लेना है।
1: जी, और जब आप बात बता रहे थे हिप फ्रैक्चर के बारे में, तो आपने उसके इलाज के बारे में भी बात की थी कि सर्जरी होती है, उसके बाद फॉलो अप प्रोसीजर होता है, बताया जाता है कि किस तरह से संभालना है,
0: बिल्कुल।
1: मैनेजमेंट क्या है, क्या रिप्लेसमेंट भी होती है?
0: या बिल्कुल, हिप रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन काफी
1: कामयाब
0: है, बिल्कुल वो अच्छा है, कामयाब है, बिल्कुल करवाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गिरे तो फिर से फ्रैक्चर होने का संभावना दूसरी तरफ भी है,
1: बना रहता है,
0: बना, बिल्कुल, तो इसीलिए आपको इलाज तो उसके लिए भी लेना है।
1: तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ा सवाल तो बातचीत में फिर वहीं का वहीं है कि गिरने से कैसे बचें?
0: बिल्कुल, वही मैंने आपको बहुत सारी चीजें गिरने के बारे में जो बताया, क्योंकि वही मेजर कॉज है गिरने का, और घर ही सबसे ज्यादा कॉमन काज है गिरने का।
1: जी
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो कुल्हे का टूटना है ये उम्र दराज लोगों में ही होता है या?
0: बिल्कुल, उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि उनके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वो गिरते कुल्हे के बल ही हैं, तो इसलिए वो हड्डी टूट जाती है।
1: मतलब 60 साल से ऊपर जो लोग हैं,
0: बिल्कुल,
1: उन्हें अपना ख्याल रखना है,
0: बिल्कुल,
1: और उनके परिवार वालों को उनका ख्याल रखना,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके आने जाने के रास्ते बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बाथरूम में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और बाथरूम में कोई ऑयल और साबुन जो है वो नहीं गिरा होना चाहिए,
0: बिल्कुल, और आजकल एंटी स्किड टाइल्स भी आती है, तो जब बाथरूम वो तो लगते हैं एंटी स्किड टाइल्स लगवानी चाहिए,
1: पर वो भी काफी देर के बाद
0: बिल्कुल कर सकती है,
1: वो भी चेंज मांगती है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम एक बार लगा के भूल जाते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा डॉक्टर साहब आप सामने बैठे हैं तो एक सवाल आपसे और कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो चला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में बड़ी अकड़न होती है, हम बहुत देर से अपने आप को पहले उस स्थिति में लेकर आते हैं, जो छोटी उम्र के लोग भी हैं, वो कारण क्या होता है?
0: उसके 2-3 इम्पोर्टेंट कारण हो सकते हैं, एक तो है रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो कि जिसको संधिवात बोलते हैं या जोड़ों का बीमारी होता है उसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है, अगर बहुत सिग्निफिकेंट है, साथ में जोड़ों में दर्द है तो उसको फिर एक रूमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, जिसको हम गठिया के डॉक्टर्स बोलते हैं।
1: मतलब आम जकड़न में भी?
0: हाँ, मतलब अगर वो जकड़न ऐसी होती कि सुबह उठ के 1 घंटा तक रह रहा फिर जा रहा है,

0: तो ये एक टिपिकल टाइम है कि भाई आधा घंटा से एक घंटा आपको स्टिफनेस रह रहा है पूरे बॉडी में, तो उनको गठिया वालों को दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ जो दूसरे कारण है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है,
1: अच्छा
0: या आपका बेड
1: मतलब ये
0: पुराना,
1: सब चीजें। अच्छा, बेड के बारे में क्या बता रहे
0: हाँ
1: हैं?
0: बेड के बारे में, कि आपका गद्दा बहुत पुराना हो गया और बीच में से दब गया और उसके ऊपर में रात भर सो रहे हैं, तो उसका कर्वेचर वैसे ही हो जाएगा, आपका स्पाइन भी उसके हिसाब से, तो
1: अच्छा
0: उसकी वजह से भी आपको सुबह सुबह में कमर में दर्द हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो उसको भी ध्यान रखिए, टाइम टाइम पे चेंज करते रहना चाहिए ताकि इकोनॉमी भी ठीक चलती रहे।
1: हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने कि समय समय पर अपनी जितनी सुविधाएं हैं,
0: बिल्कुल
1: तरीके हैं, उन पे
0: बिल्कुल
1: गौर करना चाहिए
0: बिल्कुल
1: और उनमें जो चेंजेस समय के अनुसार होने चाहिए वो हमें करने चाहिए।
0: बिल्कुल
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बार बार अपनी बातचीत में बताया कि आपके डिपार्टमेंट को जो है भारत सरकार की तरफ से ग्रांट मिली है
0: बिल्कुल
1: लोगों को और अच्छी सेहत देने के लिए, उन्हें और सुविधाएं देने के लिए, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता
0: हाँ,
1: दीजिए।
0: तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम ICMR बोलते हैं, ICMR कुछ जो रिसर्च करते हैं उन लोगों को रिसर्च करने के लिए ग्रांट देता है, तो हमारे डिपार्टमेंट को ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के साथ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें हम 5-7 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, उनको एक बहुत बड़ी ग्रांट दी है, और उस ग्रांट में हमें ये मांगा है कि आप हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर अगर हो गया तो उससे होने वाली मोर्टेलिटी को कैसे कम कर सकते हैं, और आप कोई प्रिडिक्टर ढूंढ के दिखा सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो उनको ज़्यादा फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा है, तो ये सारे चीज़ों को, बहुत सारे आयामों को हम इसमें
1: शामिल करेंगे।
0: शामिल
1: जी
0: करेंगे,
1: जी
0: और ये हिंदुस्तान के बड़े अस्पतालों में, जैसे एम्स है, जिपमर है, पौंडीचेरी, KEM मुंबई, ऐसे बड़े बड़े अस्पताल इसके अंदर
1: उसमें से एक
0: पार्टिस,
1: PGI है
0: इसमें PGI है,
1: जी,
0: PGI इज प्लेइंग ए मेजर रोल, तो वो सारे लोग
1: वो
0: इसमें
1: तो हमेशा से
0: पार्टिसिपेट
1: किया
0: करेंगे, और इसमें करीब 4,000 पेशेंट के डाटा हमारे को इकट्ठे करने का
1: है।
0: प्रोग्राम
1: जी
0: है,
1: जी
0: और उससे हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि लोगों को इस बीमारी से बचने में, होने वाले फ्रैक्चर का आउटकम में बहुत सारी मदद मिलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है।
1: तो डॉक्टर संजय बदाधा, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मुझे तो ये लगता है कि आपने बातें बताने के बाद जो डर होता है उसे कुछ हद तक आपने
0: बिल्कुल
1: समाप्त किया है।
0: बिल्कुल
1: यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं,
0: धन्यवाद, और मैं
1: क्योंकि आप
0: सबकी
1: सेहतमंद हैं तो हम भी सेहतमंद रहेंगे।
0: धन्यवाद,
1: तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बावा ने, प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन।
1: अभी आपने प्रोग्राम सुना FM लाइफलाइन। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
4: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
5: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को ₹250 दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: और लीजिए प्रस्तुत है लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम, सुने हैं मित्रा दे।

0: ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧਮਾਲ ਜੀ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ।
1: ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਪਰ। ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ 12 ਬਜਨੇ ਕੋ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਪਲੋਂ ਮੇਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸੇ ਰਿਲੇ ਕਰੇਂਗੇ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
2: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के

0: बंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में कार्यक्रम यादों की महफिल हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: कंचन, मनोहर उदास और आनंद की आवाज़ों में ये गीत कुर्बानी फिल्म से अभी आपने सुना। इंदिवर ने इसे संगीत दिया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

यादों की बारात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। आज जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिवस है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन।

0: आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा एआर रहमान की तर्ज।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: बाजीगर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में। रानी मलिक ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: दोस्ताना फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल संपन्न होता है।
1: जिस तरह इंसान का नसीब।
2: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: लीजिए प्रस्तुत है अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:30 बजे और त्रिवेणी सुनिएगा दोपहर 2 बजे। अपने दिल्ली केंद्र से हम समाचार रिले करेंगे 2:15 और शाम 5 बजे हिंदी में, उसके बाद शाम 6 बजे, रात 8:45 और रात 11 बजे हिंदी समाचार फिर से प्रसारित किए जाएंगे। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम सेल्यूलाइट के सितारे। आज इसमें आप सुनेंगे अभिनेता विनीत रैना से।

नेहा शर्मा की बातचीत। शाम 5:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रादेशिक समाचारों का समय कुछ इस तरह से रहेगा, पहले 6:10 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। अमृत वाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:00।

कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनाएंगे शाम 7:47 पर और सुर सांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर।

0: रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हवा महल। इसमें आज आप सुनेंगे झलकी नया तजुर्बा। रात 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा रात 9 बजे। छाया गीत का समय रहेगा रात 10 बजे, लेकिन उससे पहले रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ ही शामिल हो गया है। 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर जोर दिया। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हर जगह से अच्छी और उपयोगी बातें सीख कर उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, अधिकारों और सशक्तिकरण पर केंद्रित 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आज सूरजकुंड में किया गया। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से महिला प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री ओम बिरला ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित और सशक्त भारत की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। सम्मेलन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों की

रोकथाम, कार्यस्थल पर सुरक्षा, डिजिटल एवं साइबर अपराध, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के हित में लिए गए सकारात्मक निर्णयों के बाद कल प्रदेश में 387 सफाई कर्मी काम पर वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पात्र सफाई कर्मियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा एक्ट 2024 के तहत

काम पर वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पात्र सफाई कर्मियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा एक्ट 2024 के तहत सेवा सुरक्षा और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले पात्र सफाई कर्मियों के कुल मासिक भुगतान को 20,590 रुपये से बढ़ाकर 25,560 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अन्य सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा लाभ भी दिए जा रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों के साथ हर कदम पर खड़ी है और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए लगातार सकारात्मक बातचीत और कार्रवाई कर रही है। उन्होंने प्रदेश हित में काम पर लौटने वाले सभी सफाई कर्मियों का स्वागत करते हुए बाकी बचे सफाई कर्मियों से भी अपील की कि वे जल्द से जल्द काम पर लौटें और प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद, संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सफाई कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हिसार कार्यालय की टीम ने डबवाली स्थित पुलिस चौकी गोल बाजार के सहायक उप निरीक्षक जगदीत सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले में चौकी में तैनात हवलदार राकेश कुमार तथा एसपीओ राजवीर को भी सह आरोपी बनाया गया है। सहायक उप निरीक्षक जगजीत सिंह ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बबलू नामक व्यक्ति और उसके परिवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में संरक्षण देने के एवज में 1,45,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। फरीदाबाद के जिला न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय देना है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। भगवंत मान सरकार वल्लों अंदोलनकारी किसान यूनियना दियां मुख मंगां नूं स्वीकार करन दे लिखती भरोसे तो बाद चंडीगढ़ मोहाली सरहद ते मुजारा कर रहे किसानां ने कल शाम नूं अपना धरना खत्म कर दिता। खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने किसान प्रतिनिधियां नूं रस्मी लिखती भरोसा सौंपिया। लिखती समझौते मुताबिक पंजाब सरकार मुख मुद्दियां ते मते पास करन ते उन्हां नूं केंद्र नूं भेजण लई इक महीने दे अंदर विधानसभा दा इक विशेष सैशन बुलाएगी। इन्हां विच दहाके पुराने गैर संविधानक पानी वंड समझौतियां ते मुड़ विचार करन, राज दे रिपेरियन अधिकारां नूं बहाल करन लई पंजाब पुनर्गठन एक्ट दियां धारावां 78, 79 ते 80 नूं रद्द करना, डैम सुरक्षा कानून नूं रद्द करना अते बीज बिल 2025 नूं वापस लैणा शामिल है। किसानां ते माली बोझ नूं घटाउण, खास करके पंजाब राज सहकारी बैंक अते सहकारी सभावां तों लै के कर्जयां लई खेतीबाड़ी मंत्री ने भी ऐलान कीता कि बकाया कर्जयां लई इक वन टाइम सैटलमेंट नीति तैयार कीती जाएगी। पंजाब दे लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह गीटियो ने विभाग दे अधिकारियां नूं सूबे भर विच लोक निर्माण विभाग दे अधिकार खेतर विच आउण वालियां सारियां सरकारी इमारतां, पुलां ते पुलां दे होर ढांचियां दा सुरक्षा निरीक्षण ढांचागत आडिट करन दे हुक्म जारी कीते ने। निरीक्षण दौरान पाए गए नुक्स, खामी जां कमजोरियां नूं जरूरी रोकथाम उपा, मुरम्मत जां मुड़ वसेबा कारज करके पहल दे आधार ते सुधारिया जाणा चाहीदा है। उन्हां स्पष्ट कीता कि जिन्हां सरकारी इमारतां नूं असुरक्षित ऐलानिया गया है, उन्हां नूं किसे भी हालत विच उदों तक वर्तन दी इजाजत नहीं दित्ती जानी चाहीदी जदों तक दुरुस्तगी दे जरूरी काम पूरे नहीं हो जांदे अते उन्हां नूं दोबारा सुरक्षित नहीं ऐलान दित्ता जांदा। मंत्री ने यह भी हदायत कीती कि किसी भी सरकारी इमारत जां पुल आदि दी ढांचागत मजबूती नूं प्रभावित करन वाला कोई भी बदला, सोध, उस नूं चौड़ा करना, ढाउणा जां होर कम समर्थ अधिकारी दी अगाऊं प्रवानगी तों बिना नहीं कीता जाणा चाहीदा। अजिहे सारे कम लागू नियमां, तकनीकी कोडां ते विभागी हदायतां मुताबिक कीते जाणे चाहीदे ने। पंजाब कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर विखे खेडा वतन पंजाब दियां 2026 तहत जलंधर पश्चिमी दे ब्लाक पदरी खेड मुकाबलियां दा उद्घाटन कीता। इस मौके संबोधन करदिआं मंत्री ने कहा कि खेडा वतन पंजाब दियां ने सूबे भर विच इक मजबूत खेड सभ्याचार नूं उत्साहित करन विच अहम भूमिका निभाई है। उन्हां कहा कि इस पहलकदमी तहत सालाना खेड मुकाबलियां ने ना सिर्फ वड्डी गिणती विच नौजवानां नूं खेडां विच हिस्सा लैण लई उत्साहित कीता, सगों हर उम्र वर्ग के खिडारी

0: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और आरडी बर्मन की आवाजों में सनम तेरी कसम फिल्म का गीत। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म लूट मार से। राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना के बोल और दिलकश आवाज आशा भोसले की।

आशा भोसले की बहुमूल्य स्मृतियों को हमारा नमन, और इसी प्रार्थना के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई और कार्यक्रम है सुरीला सफर।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, हीरा पन्ना फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि शुरू के जो दो गीत सुनवाए गए वो सुनकर एकदम आनंद आ गया है। एक श्रोता लिखती है कि ये जो गीत तस्वीर उतारता हूँ अभी इन्होंने सुना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने पहली बार सुना है, लेकिन कैसा लगा ये गीत ये ज़रूर लिखें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये जो गीत है ये कुछ अलग है, तस्वीर उतारता हूँ इस तरह के लिरिक्स जो है उन्होंने सोचे नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह के लिरिक्स हैं, फिर भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़कर जो साथी मित्र बन गए हैं, हम उन्हें जानते हैं या ना जानते हैं फिर भी परिवार के सदस्य की तरह महसूस होता है, जिनकी तस्वीर फेसबुक पेज के माध्यम से दिल में उतर गई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत को मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि इबारत पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि मोहब्बत भी कैसी अनकही सरगम है, ना शब्द चाहिए ना कोई इकरार, बस एक नज़र काफ़ी है, और शाम की हवा में लहराती चुनरिया और आंखों में उतरता कोई अनदेखा संसार, जीवन जैसे ठहर गया हो और उस ठहराव में ही सुकून है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत प्रेम के उस एहसास को समर्पित है जो इंसान के दिल को बेखुद कर देता है और जिंदगी को सपनों तथा उम्मीदों से भर देता है। प्रेम का चरम बिंदु वो है जहाँ दो अलग अलग राहें बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से एक ही दिशा में बढ़ चलती है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जब तस्वीर की बात चली है तो क्यों ना हम उन तस्वीरों की बात करें जो हमारे पुरानी एल्बम्स में भरी पड़ी है और उनके द्वारा हम पुरानी यादों तक पहुँच जाते हैं। तो आज जहाँ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात भी है, और डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज़, एक क्लिक में न जाने कितनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उस ज़माने में जहां एक रोल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ तस्वीरें हम ले सकते थे, एक अंक होते थे कि इतनी ही तस्वीरें आप खींच सकते हैं, और फिर इतने दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था उन तस्वीरों को घर तक लाने में, और कैसी तस्वीर आई है, किसकी अच्छी आई है, किसकी ठीक नहीं आई है, वो सब यादें आप मुझसे साझा कर सकते हैं। क्या आपने वो सब तस्वीरें संभाल के रखी है, किस तरह से संभाल के रखी है, क्या उन पुरानी एल्बम तक फिर से कभी कभी बैठ कर जाते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, देखते हैं, क्या फ़र्क है उन तस्वीरों में और आज हमारे मोबाइल फ़ोन की तस्वीरों में, लिखिए मुझे अच्छा लगेगा। अगले गीत तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखती है कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग, जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे, वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे कुछ होता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देख कर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब जरूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबां खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुँचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आँखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरानी से लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहाँ। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जब पहुँच जाएँ, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को सजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहाँ इतने प्यारे बीच हैं और हरियाली है, जहाँ उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त ज़रूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत ज़रूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था, और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते और यादें एक रील में कैद हो जाती। जब रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती, तो बड़ा मज़ा आता और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देख कर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब्र और यादों की मिठास होती थी। आज एक क्लिक में तस्वीर सामने आ जाती है, मगर पुरानी तस्वीरों जैसा उस पल का इंतज़ार और ठहराव कहीं कहीं बहुत याद आता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल महाशय जो है, इंटरनेट जो है, बहुत उन्हें परेशान कर रहा है, आँख में चोली खेल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ ही लिया है हमारे इस प्रोग्राम को, और इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और श्रोता लिखते हैं कि आधे घंटे का सफ़र निकल चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र निकल चुका है, और घबराहट हो रही है कि सुरीला सफ़र में आज क्या हो रहा होगा, लेकिन अभी भी बाकी है, आप हमारे साथ बने रहें।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरों की दुनिया में अगर प्रवेश किया जाए तो चाहे वो एल्बम हो या फोन, वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंत तक आज के इस प्रोग्राम के समापन की ओर, तो हमें भी पता नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेष कर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है, और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी। आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा है इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद पसंद आता है। ये ज़रूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फ़ोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

साथियों, ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाएंगे। ये गीत आप सागर फिल्म से सुन रहे थे इस वक्त किशोर कुमार की आवाज़ में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न करते हैं। आज आपने ये सफ़र तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

8 सितंबर का दिन दुनिया में बड़ा मायने रखता है। इस दिन होता है विश्व साक्षरता दिवस। दरअसल विश्व साक्षरता दिवस आज से नहीं बल्कि सन 1966 से मनाया जा रहा है। 1965 में ईरान के तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व साक्षरता पर विचार किया गया और 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने ये ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि दुनिया के 127 देशों में से 101 देशों में साक्षरता एक समस्या बनी हुई है। भारत का अगर हम आकलन करें तो जो आंकड़े मिलते हैं वो ये बताते हैं कि 1947 में हमारी साक्षरता 12% थी और 2011 का आकलन ये बताता है कि हमारी साक्षरता की दर 74% तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये 100% तक क्यों नहीं पहुंची है? वो कौन से 25% लोग हैं जो अभी भी लिखने पढ़ने की दुनिया से दूर हैं?

0: राजा बेटा बन।
1: सवाल ये है कि साक्षरता की दर हमारे देश में 100% क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत वर्षों से, बल्कि कहा जाए कि कई दशकों से अभियान चलाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को कम से कम साक्षर बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आती और बदलती चली जा रही है, उसमें केवल साक्षर होने से अब काम नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी की साक्षरता बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। जाहिर है कि अब चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें अपने देश की आबादी को साक्षर भी बनाना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

पूरी दुनिया में 77.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो साक्षरता से दूर हैं। बच्चों का भी यही हाल है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह एक तो आर्थिक विषमता है, दूसरी तरफ जागरूकता की कमी, और तीसरा भौगोलिक रूप से बहुत मुश्किल इलाके जहां स्कूल नहीं है या बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनसे बहुत दूर हैं। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत जोरदार तरीके से कोशिशें चल रही हैं। देश के कोने कोने में सुदूर अंचलों और गांवों में स्कूल हैं, शिक्षा कर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए दोपहर का भोजन तक स्कूल में ही दिया जाता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर है कि जब हर उम्र के लोग साक्षर होंगे, शिक्षा से नाता जोड़ेंगे, तो उनके पर खुलेंगे, वो ऊंचे आसमानों में उड़ने के लिए तैयार होंगे। कहने का मतलब ये है कि उनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
6: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
6: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
6: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
5: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू

0: मरगांव और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: सारी स्थिति को को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी

0: मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
2: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे है और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
1: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
4: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को

0: 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। 9-2-11 फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसटी बर्मन का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन की तर्ज और इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

अज समझे

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ST बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

आत्मलो के रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे आत्मलो के रूठ।

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ।

तुमसा नहीं देखा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री। देव

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
2: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
3: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
1: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ। और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी का, तो सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे, फिर संपादकीय वाला पृष्ठ, फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो, उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं, भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाता है।
2: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा, उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए, तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है, व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है, तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं।
1: अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं।

0: हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है, और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए। तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं, और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी, तब तो मोबाइल फोन का ज़माना नहीं था,
1: बिल्कुल
0: इंटरनेट का, सोशल मीडिया नहीं था, तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और
1: जी,
0: तो फिर जाना ना पड़े, तो वो खबर सबसे पहले देखते थे कि
1: अपने
0: एयू
1: से जुड़ी
0: क्लोज्ड, याद होगा,
1: जी
0: है ना?
1: आपने बिल्कुल सही कहा
0: तो
1: आपने, क्योंकि जो जिस
0: हाँ
1: समय दौरान दौर में हम लोग थे, तो
0: हाँ
1: उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे, है
0: तो
1: ना।
0: एक मिनट
1: हाँ
0: इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ।
1: हाँ
0: वो
1: प्लीज
0: ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी, हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे।
1: जी
0: अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें, जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया,
1: जी
0: प्रतिदिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर, कि जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली, कुहासा छाया हुआ, घनी बदली है, ठंड से हड्डियां कपकपा रही हैं, ऐसे में लगता था अरे बाप रे, क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी, और घर से बहुत दूर थी,
1: जी
0: तो पन्ना पलटते थे, एयू क्लोज्ड जब आता था, आहा, आज तो नहीं जाना है, घर पे आराम से
1: बड़ा
0: रजाई ओढ़
1: आराम
0: के
1: मिलता
0: बैठना
1: था,
0: है।
1: बड़ा
0: तो
1: आराम मिलता
0: ऐसी
1: था
0: कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान,
1: जी,
0: तो जरूर लिखें, बहुत संक्षेप में
1: बिल्कुल
0: लिखें हमारे श्रोता, है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक करना, यानी कि किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी, किताबों से, अखबारों से, सब जगहों से लेना पसंद करते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: जरा बताइए,
1: तो
0: शिक्षा क्यों जरूरी
1: भाई अगर शिक्षा, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ ही क्या पाएंगे कुछ भी, हमें सब
0: है?
1: किताबें शून्य नजर आएंगी
0: और
1: जी।
0: किताबें कैसे पढ़ेंगी, और करियर के लिए कैसे आगे
1: हाँ
0: बढ़ेंगी,
1: पहले तो
0: और
1: किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है
0: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है, और साथ में अब
1: जी
0: आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है,
1: जी
0: खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा
1: बिल्कुल,
0: होता है घरों में, वो भी बताएं।
1: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में सुरुचि वाघ Jombe.com की संस्थापक CEO हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

तो देखिए, शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चों को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीज़ें, अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ABCD, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है, और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे

0: देखिए, शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चों को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीज़ें, अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ए बी सी डी, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है। और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन
0: जी
1: पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर। अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल जाने की, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे आचार व्यवहार, बात
0: जी
1: करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं माता
0: बिल्कुल
1: पिता अकेले। जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है, जहाँ से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और उन सब के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज़ की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे, और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से, अपने अंदर से जो क्या आता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज़ पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है। और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है। और इसके साथ साथ ममता जी, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
1: बिल्कुल। और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एक समय था कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थीं और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था
0: जी
1: कि ठीक है, इनका इन्हें क्या होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा कर, एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहाँ का काम काज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है,
0: बिल्कुल
1: महिलाओं को भी, लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा ज़रूरी है जितना कि लड़कों के लिए।
0: बिल्कुल
1: और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे
0: जी
1: बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है
0: दुनिया होती है
1: उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं।
0: जी
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर बराबर,
0: बिल्कुल, आपने बहुत
1: तो
0: सही
1: अगर
0: बात
1: वो
0: कही।
1: शिक्षित नहीं होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे।
0: जी, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं और बेटियों को इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूर दें।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
0: बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने फैसले लेने, खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
1: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है, उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान कौशल आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने के निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है। तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हाँ, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व या अच्छी

0: बातें अनिवार्य रूप से समाविष्ट करती हैं। और इसी तरह से हमारे एक साथी और लिखते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। आज शिक्षा के बिना आज के ज़माने में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है। अपने आप को लाचार समझने लगता है। संसार और जीवन को ठीक से समझ भी नहीं पाता। इस कारण शिक्षा जरूरी है।
1: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास, ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानता को दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि वाघ, Jombay.com की संस्थापक और CEO। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर Jombay की सह स्थापना की। आखिर Jombay क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है। तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहाँ से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस

0: पर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आई। वे समझ चुकी थी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर जॉम्बे की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी। एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेटिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार को मापने की बात वो करती थी, तो कई पुरानी सोच वाले अधिकारी उन पर शक करते थे। और एक युवा महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में कॉर्पोरेट बोर्डरूम में अपनी बात मनवाना और भरोसा जीतना एक बहुत दोहरी चुनौती थी। लेकिन सुरुचि वाघ ने हार नहीं मानी। उन्होंने जॉम्बे को केवल एक डेटा कंपनी नहीं बनाया, बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह मिलाया कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व, क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण का निर्माण के लिए वो कदम उठाती थी।
0: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली। एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
1: सुरुचि वाघ की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्ता भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है। और उन्होंने खास पहचान बनाई।
0: जी, और हम लोग सुनते हैं एक

0: तो अब घड़ी की ओर देखिए, एक अंतराल का समय हो चुका है, तो अंतराल के बाद वापस कुछ बातें लेकर हम आते हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस
1: जी
0: महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं।
1: नहीं, वो
0: वो
1: हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं,
1: जी।
0: अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी हैं जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती हैं, लिखती भी रहती हैं कुछ कुछ। उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है। मगर अब आज का जो जमाना है वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांध कर,
1: सही बात,
0: कागज ही रखेंगे शब्दों
1: शब्दों
0: को
1: को बांध कर।
0: बांधकर।
1: बहुत
0: मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से
1: जी
0: याद आ
1: जी
0: गया
1: जी
0: कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से वो पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था।
1: बिल्कुल
0: ये सारी मैगजीन, चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह
1: जी
0: वगैरह,
1: जी जी
0: और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़ कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई
1: जी
0: होती
1: जी
0: थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया।
1: जी
0: अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं
1: जी
0: होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती थी।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी
1: उसके।
0: आ
1: हाँ,
0: जाते
1: आते
0: थे
1: भी थे।
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे
1: हाँ
0: कि देखिए अंत में क्या,
1: जी
0: शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या
1: हाँ
0: हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते
1: जी
0: थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया

0: जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोल कर पढ़ लेते थे, और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान, शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था। और देश दुनिया की जो खबरें होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
1: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार छोट लघु कथा लिखी होती थी या
0: जी,
1: कोई अलग से चुटकुला या
0: या
1: कोई और
0: कार्टून
1: बात।
0: का भी रहता
1: हाँ, तो
0: था
1: वो भी हम
0: सेक्शन।
1: लोग पढ़ डालते थे। और
0: जी
1: चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठा कर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें
0: सही
1: क्या
0: बात।
1: लिखा था, और कुछ कुछ अटकले लगा लेते थे कि
0: हाँ
1: ये होगा इसमें।
0: देखिए, शिक्षा का यही फायदा हुआ ना कि कहीं
1: बिल्कुल।
0: भी कुछ लिखा दिखा
1: और
0: पढ़ने लग गए।
1: साथ में पढ़ने का शौक,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ
0: बिल्कुल।
1: माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था,
0: जी
1: तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और
0: जी
1: एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था।
0: बिल्कुल।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा, हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है,
0: कॉलम आया करता
1: कॉलम
0: था।
1: आया करता था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना ज़रूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई।
0: बिल्कुल
1: सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं, अखबार का वो या तो कैंची से काट
0: जी
1: कर
0: जी
1: या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
0: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उसको
1: वर्ग
0: भी,
1: पहली होती
0: हाँ
1: थी।
0: वह, हाँ वो भी, और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग, याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे। वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी
1: इसी
0: चाहिए।
1: तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार
0: जी
1: होता है,
0: जी
1: नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताज़ा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए, और कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है, और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है। पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय, आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए, और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए दीजिए, तो बच्चों के पास उनके उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए।
1: किताबों और अखबार
0: जी
1: से जानकारी आपकी बढ़ती है,
0: जी
1: और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके,
0: जी
1: बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर कभी कभी ज़्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोज़ाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत ज़रूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, तो ज़रूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्मपत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज़ मुझे मतलब लगती है, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
1: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नज़र डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ लें, वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू वो आकृष्ट किया करती थी।
0: मैं कहने वाली थी, और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा चुका है।
1: और पुराने अखबार का प्रयोग भी

0: बड़ा अच्छा किया जाता था पुराने अखबार निकाल कर
1: जी
0: किताबों पर कवर चढ़ाना।
1: जी
0: जो स्कूल की किताबें होती थी स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर से पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये जो संभालने की प्रवृत्ति है
1: हाँ
0: अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में,
1: बिल्कुल
0: ये हम सबको सिखाने की ज़रूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज़ से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे, हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूँ और बाकायदा 1, 2, 3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूँ, लिखती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट ना जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है।
1: जी
0: कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
1: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बादी में टाइम मिलता है, महिला जी ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़ें और अपनी आदत जरूर बनाएं अखबार पढ़ने
0: हमारे एक
1: की।
0: श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताज़ा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे। उस समय इंदौर में पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज़, अब भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट
1: जी
0: पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह
1: बिल्कुल
0: देखती
1: सही
0: हूँ।
1: बात इन्होंने
0: राशिफल
1: लिखी है,
0: भी हम देखा करते थे
1: बिल्कुल वो
0: और
1: तो
0: रोजाना वाला राशिफल
1: रोजाना वाला
0: कि
1: है।
0: आज क्या होने वाला है।
1: जी जी
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा।
1: शुभ होगा, और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
0: तो अब
1: जी
0: पढ़ने की बातें तो अंतहीन हैं, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही कहते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए,
1: पढ़िए
0: किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: हे राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना है तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक कर देना, घर का घाट कर देना।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं, घर घाट एक करना कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी

0: भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल ये बात बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई हैं, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगुसराय, इश्क में मरजावा, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
1: जी।
2: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूँ और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ। इट्स एन ऑनर।
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है, या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
2: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, यू नो, टीचर टीचर नहीं खेला होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं, बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
1: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी, लेकिन जब

0: ये तय किया होगा कि अब अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
1: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा। और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी इसकी इसकी आवाज़ निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज़ निकाल के दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया। और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको, दूरदर्शन कशीर, उस पर मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज जो कभी 7 एपिसोड कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पर काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
0: जी, तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम करते करते। जी, तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी, किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
1: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे, हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए, हम बिल्कुल बेघर हो गए थे उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया कि मुंबई इसलिए आऊँगा कि नौकरी भी करूँगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना ज़रूर मैं ट्राई करना चाहूँगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज़ की तरफ देखा ही नहीं।
0: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित की अगर हम बात करें?
1: मुल्क था और वो पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया, मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने ही सिखाया मुझे।
0: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला लें?
1: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
0: जीना या मरना या?
1: जी हाँ।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बंध जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं।
1: जी
0: जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए,
1: जी
0: कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे, या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है,
1: जी
0: और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी, जो वो
0: जी
1: उसमें बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है,
0: जी
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था। उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय, मैं ये दोनों शोज कर रहा था। ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा,
0: जी
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइप
0: टाइप
1: कास्ट कर
0: कास्ट
1: दिया जाता है
0: जी
1: एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहाँ से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे, तो कभी भी फिर
0: हाँ
1: तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा?
0: जी
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं, और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं, तो या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था, और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना, जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो।
0: जी
1: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया, तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया, और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
0: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं, तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
1: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है,
0: जी
1: अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
0: जी
1: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके, बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज़ कर रहा होता
0: जी
1: तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और
0: जी
1: आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी,
0: जी वो स्वीकार
1: सिर्फ
0: करना बहुत
1: सिर्फ
0: जरूरी है।
1: उनकी वजह से। मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी का क्रेडिट है, वो भगवान मैं
0: जी
1: मानता हूँ, यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस हैं, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
0: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं

0: हम देख सकते हैं इनको और
1: बिल्कुल
0: स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी
1: बिल्कुल,
0: बात है।
1: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
0: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
1: साईं बाबा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है,
0: जी
1: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान दे के प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा।
0: जी तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए? क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्री राम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ
0: जी
1: और मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ, उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी था उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित्र में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था,
0: जी
1: और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीज़ों को आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
0: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन लें, आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैं चाहता हूं कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
0: आनंद फिल्म से
1: बिल्कुल
0: जी।

तो विनीत, ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए, या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया?

0: क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए।
0: जी
1: इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पे आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है,
0: जी
1: जब सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज़ का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं यहाँ, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पर आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एक राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से ज़रूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त
0: जी
1: आपके तुणीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी
0: जी
1: आप सस्टेन कर पाते हैं।
0: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
1: मेरा
0: कितने
1: जो
0: घंटों का?
1: पॉपुलर शो था माय का, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
0: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया
1: हाँ,
0: जिसमें
1: जिसमें
0: ब्लास्ट के थ्रू इनका।
1: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे
0: जी
1: और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर।
0: जी
1: और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम 1-2 दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये
0: और तब तक
1: बहुत,
0: बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आके
1: फिर
0: वापस
1: जब
0: शूट
1: ये
0: किया।
1: 2 दिन मैं सोया हूँ, उसके बाद वापस
0: जी
1: से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
0: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है,
1: सारी
0: क्योंकि
1: यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स
0: हाँ
1: अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
0: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का हम सुन ले सब।
1: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
0: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
1: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी. जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले. तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है अपना, अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से. तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को,
1: जी
0: क्योंकि कई
1: बिल्कुल,
0: बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस.
1: ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए. और
0: जी
1: यही चीज़ है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं.
0: जी
1: क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है.
0: जी
1: और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं.
0: जी
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना ज़रूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया.
0: जी
1: लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग ख़राब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जहाँ पर आपका दिमाग भटक सकता है.
0: जी
1: लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है. चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है,
0: जी
1: वो लोगों को नहीं दिखता. जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है. और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज़्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है. तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होके तुरंत कि हमें ये
1: क्लब्स
0: सब
1: में
0: करना
1: जाते
0: है.
1: हुए या
0: जी
1: पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में. करें, लेकिन ये चीज़ें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए. सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं.
0: जी
1: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो अपने.

0: मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं। उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये
1: कल क्या
0: बहुत
1: होगा ना,
0: ज़रूरी
1: पूरा दिन
0: चीज़ है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी। और जैसे कि आप इन दिनों टीवी, फिल्म, ओटीटी, वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज़्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर
1: जी
0: लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके
1: जी
0: बाद पहले माचिस से और किसी चीज़ से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो
1: जी
0: ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू कर दें। वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है।
1: जी
0: यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो,
1: जी
0: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज़ कर रहे हैं। वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है। कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
1: जी
0: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानियों को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है। कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया
1: वर्टिकल रख
0: जाता है,
1: दिया
0: कभी
1: जाता है
0: हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है,
1: जी
0: लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, उनको एंटरटेन तो करना ज़रूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज़्यादा कलाकार होंगे। कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज़्यादा प्यार
1: जी
0: मुझे लगता है फैलेगा।
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही है, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया। ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं,
0: जी हाँ,
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज हैं, इन सब का क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविज़न शोज़ की। और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहाँ भी हमारे इंडियन टेलीविज़न शोज़ टेलीकास्ट होते हैं, वहाँ हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में,
1: जी
0: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी यू
1: जी
0: नो मैं वहाँ जाता हूँ। और ख़ासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज़ हुई। उसकी निर्माता निकोलेट एनडीग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफ़ी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें।
1: जी
0: एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28 अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मैं
1: जी
0: चाहता हूँ कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहाँ ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहाँ की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है क्योंकि

0: मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मज़े की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे,
1: जी
0: वहाँ पर यहाँ की एक चैनल वहाँ पर टेलीकास्ट होती है
1: जी
0: जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहाँ पर टेलीकास्ट होता है। और जब मैं वहाँ गया, और वो इतना पॉपुलर शो है वहाँ कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है,
1: जी
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे
0: इंडियन
1: पहुंच गए
0: एक्टर वहां
1: जी
0: कैसे हूँ। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा, और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे है? मतलब
1: यहाँ भी
0: यहाँ
1: फैन
0: के
1: फॉलोइंग है
0: लोकल लोग तुम्हें
1: जी
0: पहचान रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ। आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा, और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया, एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक
1: जी
0: इशारा किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा,
1: जी
0: मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन। और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली,
1: जी
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है, कोई कुछ है। तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ।
1: जी
0: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए, और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं, एंड ही वॉज द पार्ट
1: वाह
0: ऑफ द शो,
1: जी
0: ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो, ही वॉज प्लेइंग माई डैड इन दैट शो, इन दैट पायलट। व्हेन आई सॉ हिम, मेरे लिए वो, मतलब मेरा एक, मैं ना फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ, आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे, और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया, और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे, और मैंने कहा काका, मतलब मेरे लिए ये एक, मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा, एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते हैं
0: बिल्कुल।
1: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो, जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची
0: बावर्ची तो
1: बावर्ची
0: बस
1: एनी डे। मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और
0: हाँ
1: मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज़ में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी,
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना
0: हाँ बार बार देखी जाती थी, बागवान
1: अपने
0: से पहले ये देखी जाती
1: हाँ
0: थी जी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग स्टार,
0: स्टार जी, उनका एक अलग ही चार्म था।
1: अलग ही चाम था।
0: नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं कुछ
1: बिल्कुल,
0: और बन के आते हैं और फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं,
1: हाँ
0: उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया
1: ये
0: जा
1: सब
0: सकता है
1: असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री
0: जी।
1: के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है।
1: जी
0: तो कभी
1: हाँ
0: कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है, तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए।
0: जी
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए,
0: जी
1: तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रैना है,
0: जी
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ,
0: जी
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है।

0: अभिनीत
1: जी
0: रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: जी
0: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस
1: विनीत
0: वो
1: रैना
0: विनीत
1: बन
0: रैना है
1: जी
0: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर
1: जी
0: वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
1: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं। शायद इतने साल से
0: देखिए,
1: काम
0: हमेशा
1: करते
0: तो
1: करते आपको ये
0: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमिडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है,
1: अच्छा
0: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहाँ पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए,
1: जी
0: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम ख़त्म किया, सीन पूरा ख़त्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम ख़त्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ, और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और
1: जी
0: ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस
1: एक
0: मेंटेन करना
1: बैलेंस
0: आसान रहता है।
1: जी, और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
0: जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए,
1: ठीक
0: क्योंकि
1: है,
0: इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा।
1: बिल्कुल।
0: चांदनी

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये कौन?

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ,
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले हैं आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: क्रश जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहाँ ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे,
0: जी
1: तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: ये जाता
1: हाँ,
0: है गाना।
1: जी हाँ,
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन
0: जी
1: एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ,
0: जी
1: अनलेस एंड अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो
0: जी
1: शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था,
0: जी
1: और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे, जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो
0: जी
1: याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं,
1: जी
0: तो अगर
1: हाँ,
0: आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे।
0: जी
1: उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने,
0: जी
1: उन्होंने ही डिस्को और इस तरह के गाने, एक आरडी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी,
0: जी
1: इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूज़िक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज़ किया और मैं गया,
0: जी
1: मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है, और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन
0: चैन
1: कहाँ
0: का
1: रे
0: रहे
1: उसको 100% रिमिक्स करना चाहूँगा।
0: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हम।
1: बिल्कुल

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया हमारे अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूँ, तो ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मज़ा आया और दोबारा आना चाहूँगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपने विविध भारती के मुंबई केंद्र से अभी सुना कार्यक्रम पिटारा। हम आपको याद दिला दें, विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही आज रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा। और आज की फनकारा हैं आशा भोसले। याद रखिएगा, रात 9:30 पर। श्रोतो, इस समय शाम की 5 बजने को हैं, तो अब से बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब उन्नति रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नवसारी में एक जनसभा में लोगों और जनप्रतिनिधियों से समाज सेवा तथा स्वच्छता को दैनिक आदत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत और चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि दोनों देश सहमति से आगे बढ़ने पर काम कर रहे हैं।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था CBAM के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इनमें इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म और रामनामी को जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र चुना गया है। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामू गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फलफूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने रिकर्व पुरुष डबल्स में तथा तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पूजा जत्यान और भावना चौधरी ने महिला रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, इस समय 5:05 हुए हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: और लीजिए अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत। इस कार्यक्रम में इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के गाए हुए गाने।

ये गीत आपने आशा भोसले की आवाज़ में सुना। निदा फाजली का लिखा हुआ, धुन खयाम की थी। फिल्म का नाम था श्रोताओं आहिस्ता आहिस्ता। आइए अब सुनते हैं इसी सुरीली आवाज़ में गुलशन बावरा का लिखा हुआ एक गीत।

धुन खयाम की थी। फिल्म का नाम था श्रोताओं आहिस्ता आहिस्ता। आइए अब सुनते हैं इसी सुरीली आवाज में गुलशन बावरा का लिखा हुआ एक गीत। फिल्म का नाम है झूठा कहीं का।

ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम था आया सावन झूम के। इसी आवाज में लीजिए अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, धुन रवि की है और श्रोताओं फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

और लीजिए अब सुनिए ओपी नैयर की धुन पर आशा भोसले का ही गाया गीत हमसाया फिल्म के लिए। इसे लिखा है हस्तचेपुरी ने।

0: हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में इस समय आज हमने आपको आशा भोसले के गाए हुए गीत सुनवाए। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं श्रोताओं। अब हम आपके लिए प्रसारित करेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ एनसीईआरटी की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का

0: विकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताज़ी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: लेकिन डाइन कौन देगा?
5: जी, हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
2: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1, 2, 3 सब छुप गए ना? 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
3: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
6: मोहित, अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
3: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
5: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
3: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
5: बबली, तुम अलमारी के पीछे हो?
4: धप्पा!
5: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
3: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
5: मारिया, तुम पलंग के नीचे हो?
7: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
4: अंदर छुपा हूँ।
5: मारिया,
4: धप्पा!
7: अरे नहीं।
3: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
8: दादी, दादी, दादी हिलना मत, हिलना मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
5: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
4: सिमरन धप्पा,
7: फिर पकड़ लिया।
5: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
3: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
2: जी धप्पा।
0: ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
3: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल। तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापकगण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
6: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
7: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
8: नमस्कार,
7: नमस्कार,
6: नमस्कार। आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं

0: जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
1: जी जी
0: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
1: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
2: जी,
1: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
2: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
1: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
2: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
3: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
1: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
3: अच्छा।
1: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
0: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे।
3: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
0: अच्छा।
3: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
1: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
3: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
1: जी,
3: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
1: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
3: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
0: जी।
3: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
1: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
3: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
0: जी। नीलम जी, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
4: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
3: अच्छा, एक बात बताओ
4: जी,
3: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
4: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
3: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
2: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?

0: ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग-अलग दिखाई देता है।
1: जी
0: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे-धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं।
2: जी
0: पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
1: अच्छा
0: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
1: ऐसा विकार होता क्यों है?
0: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
1: अच्छा हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
0: सरिता अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हां
3: जी मैडम।
0: हां तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
1: जी
0: इन बच्चों की आयु सीमित होती है इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
1: जी
0: केवल बच्चों को और उनके माता-पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
1: जी ठीक है।
4: हां दीपिका जी आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
1: जी डॉक्टर पुष्पा ये सीमा है ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
5: नमस्ते
4: डॉक्टर पुष्पा। ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना उनकी बहन की बेटी है।
0: अच्छा अच्छा सीमा कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
5: मैं 7वीं में पढ़ती हूं।
0: रेनू जी जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
6: डॉक्टर पुष्पा मैंने और नीलम जी ने इसकी मां से विस्तार में बातचीत की है।
0: अच्छा
6: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
1: डॉक्टर पुष्पा सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
6: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी-कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
0: अच्छा
6: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
1: डॉक्टर पुष्पा कभी-कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
6: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
1: जी
6: कुछ लोगों का शायद यह मानना है कि यह कोई छूत की बीमारी ना हो
0: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
1: सीमा तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
5: हां संभव तो आता है पर लिख नहीं सकती।
6: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
0: अच्छा
6: और ये साफ-साफ बोल नहीं पाती इसलिए लोग इसकी बात ठीक-ठीक समझ नहीं पाते।
1: रेनू जी इसको ये समस्या कब से है?
6: ये बहुत ही छोटी थी करीब 4 महीने की रही होगी तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
0: अच्छा
6: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
1: डॉक्टर पुष्पा इसको समस्या क्या है?
0: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
1: डॉक्टर पुष्पा हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
0: देखिए इसको हर कार्य छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर क्रमानुसार

0: अनुसार लगाकर थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
1: जी, आज हमने तीन प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
0: जी,
1: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
0: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगी?
2: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
1: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
2: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा, यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
7: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
8: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
9: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
4: ਅਬ ਦਰਦ ਨਾ ਸਹੋ तुम खुल के मुस्कुराओ, बवासीर के दर्द से फुल आजादी पाओ, बिना दर्द

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
4: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
4: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
5: अरोड़ा प्लाईवुड,
6: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
5: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
1: श्रोताओं, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? BMT की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
7: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले शाम दे 6:10 होने वाले ने ते हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक समाचार। पहला 6:10 ते हिंदी च, उस तो बाद 6:20 ते पंजाबी च। पंजाबी च प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो रिले किते जाणगे।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य

के समाचार। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दी। भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला संपन्न हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला नेतृत्व को मजबूत करने पर बल दिया। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में MLA हॉस्टल की डिस्पेंसरी एवं अम्बाला शहर और करनाल जिले के नागरिक अस्पतालों के लिए नई अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदने को मंजूरी दी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा में खेलों को बढ़ावा न देने के आरोपों को खारिज किया और भारतीय जनता पार्टी ने नशों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की। अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। ब्रिटेन ने यह राहत अपनी कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए शुल्क दो बार नहीं चुकाना पड़ेगा। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत

0: अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। ब्रिटेन ने यह राहत अपनी कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए शुल्क दो बार नहीं चुकाना पड़ेगा। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इनमें इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि राहत की मात्रा भारत में वास्तव में चुकाए गए कार्बन मूल्य और ब्रिटेन के नियमों के तहत जरूरी प्रमाण और सत्यापन पर निर्भर करेगी। यह फैसला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही तकनीकी वार्ता के बाद हुआ है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शी इज द चेंज मेकर विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गई। समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला नेतृत्व को मजबूत करने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शी इज चेंज मेकर केवल एक शीर्षक नहीं है,
1: यह केवल एक शीर्षक नहीं है, यह एक विचार है, यह एक संकल्प है। यह कहता है कि आप बदलाव की सिर्फ साक्षी नहीं है, आप बदलाव की शिल्पकार हैं। आप केवल व्यवस्था से प्रभावित होने वाली नागरिक नहीं है, बल्कि व्यवस्था को मानवीय दिशा देने वाली आप नेतृत्व करता है। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वह केवल अपना जीवन नहीं बदलती है, वह अपने परिवार में विश्वास, समाज में संवेदना और राष्ट्र में विकास की एक नई ऊर्जा होती है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक में महिलाओं के जीवन को बदलने का काम किया है।
1: देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एक दशक में महिलाओं के जीवन को बदलने का काम किया है। हम देखते हैं विषय चाहे छोटा है उसका प्रभाव बड़ा पड़ा है, चाहे जनधन खाते के खोलने की बात हो, चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से सशक्त करने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएं से बचाने की बात हो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बनाने की बात हो।
0: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस कार्यशाला में हुई चर्चा के सार्थक परिणाम मिलेंगे। कार्यशाला में देश के 20 से अधिक राज्यों की महिला विधायकों ने भाग लिया और महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व, नीति निर्माण तथा सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने बताया कि विभिन्न राज्यों से आई महिला विधायकों के अनुभवों और सुझावों से कार्यशाला को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा के डीएसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्माचारी की 22वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र स्वरूप ब्रह्माचारी के आदर्श आने वाली पीढ़ियों के चरित्र को गढ़ने का काम करते रहेंगे।
1: देवेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है, तब भी उनके विचार समाज की चेतना का जीवंत प्रमाण है। उनकी वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, उनके कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी कहते थे अक्षर ज्ञान या डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है, शिक्षा वह सकती है कि जो मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास जगाती है, जो चरित्र का निर्माण करती है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्माचारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन भी किया। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी के साथ साथ अंबाला शहर और करनाल जिले के नागरिक अस्पतालों के लिए नई अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों को समय पर और सटीक जाँच की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज और डायग्नोसिस के लिए महंगे निजी केंद्रों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की खरीद और इसे प्रयोग में लाने पर लगभग 81 लाख रुपए की लागत आएगी। अंबाला और करनाल में भी जल्द ही यह मशीनें उपलब्ध कर दी जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अम्बा

0: अयोध्या में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी।
1: सीएम सैनी पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं और दोनों जगह का वो ठीक इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश को भी तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं और पंजाब सरकार को उखाड़ कर वहाँ पर कमल के फूल वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं।
0: श्री दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा में खेलों को बढ़ावा नहीं देने के आरोपों पर श्री अनिल विज ने कहा कि जमीनी सच्चाई ही उनके आरोपों का जवाब है। उन्होंने कांग्रेस शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अंबाला में ही फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल व बैडमिंटन हॉल बनाकर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नशों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली। श्री भाटिया ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्री हरपाल सिंह चीमा को भी त्यागपत्र देना चाहिए ताकि घटना की निष्पक्ष जांच हो सके। आज चंडीगढ़ में पूरे राज्य से आए हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च किया। हालांकि पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें रोक दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को कथित तौर पर दिड़वा के गुलजार सिंह की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तुरंत बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गुलजार सिंह ने अपने मरने से पहले दिए बयान में श्री चीमा को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले शेरों गांव के मोहनजीत सिंह पर पुलिस की बर्बरता का भी जिक्र किया और बलात्कार के आरोपी को सुरक्षा दिए जाने पर मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी अंबाला के गांव सिरसगढ़ की सिमरनजीत कौर का आज गांववासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लेफ्टिनेंट सिमरनजीत कौर ने बताया कि बचपन से ही वह सेना में जाने का सोचती थीं।
2: ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी इज माई चाइल्डहुड ड्रीम। ये जब से मैं अपना होश संभाली हूँ तब से मेरा सपना था कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूँ एंड मेरे घर पे एक ऐसा माहौल रहा है जिसने मेरे को आर्मी ज्वाइन करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। मेरे दादाजी ने भी इंडियन आर्मी में सर्व किया, देन माई फादर इज ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड मेरे ब्रदर ने भी इंडियन आर्मी ही ज्वाइन की। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दी। भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला संपन्न हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला नेतृत्व को मजबूत करने पर बल दिया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। देश विच सौने दियां फसलां हेठ बीजा गया कुल रकबा 1086 लख हैक्टेयर तो वध हो गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ते सूबे विच नशियां दी अलामत नूं काबू करन अते इस दे खात्मे लई ठोस कारवाई ना करन दा इल्जाम लाया है। पंजाब पुलिस ने आज उत्तरी खेतरी पुलिस तालमेल कमेटी NRPCC दी 10वीं मीटिंग की थी। पंजाब भर विच स्वच्छता मुहिम 2.0 नूं 12 सितंबर तक वधाया गया ते भारत ने अहमदाबाद विच विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज दे तीजे पड़ा च अज आखिरी दिन मर्दां दे टीम मुकाबलियां विच 2 सोने दे अते औरतां दे रिकर्व वर्ग विच 1 चांदी दा तमगा जित्तिया है।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: श्रोताओ, क्या थैलेसीमिया, लोकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? BMT की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर

0: आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं तो इस बार FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।
1: श्रोतियों, प्रोग्राम जय माला री को बस थोड़ा जिहा इंतजार।

अभी आपने लक्ष्य फिल्म में शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और रूप कुमार राठौर को सुना। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शंकर ईशान लॉय ने। लीजिए सुनिए तेजाब फिल्म का गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।

0: परिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने गुलजार का लिखा गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र की थी। फिल्म का नाम था सितारा। गुलजार का ही लिखा एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। संगीत दिया है खयाम ने। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

लीजिए सुनिए परदेस फिल्म का गाना कुमार सानू की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है नदीम शबन ने।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को फिल्म शोर में। संतोष आनंद के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया प्यार का मौसम फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीत बद्ध किए इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: वाह फैंटास्टिक, ये ऑफिस है या इंद्रपुरी? एक से एक रंभा, उत्तम अति उत्तम, वाह वाह। एक्सक्यूज मी मिस्टर नितिन, कहाँ बैठे हैं?
1: जी वो सामने कैबिन में।
0: थैंक यू। एक्सक्यूज मी वेयर आई कैन फाइंड मिस्टर नितिन प्लीज?
1: अ लिटिल अहेड प्लीज इन दैट केबिन।
0: जी थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी
1: मिस्टर नितिन।
0: जी वो अच्छा वो सामने वाला कैबिन।
1: यस
0: थैंक यू वेरी मच। हुजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
2: प्लीज वेट फॉर वाइल।
3: अरे ओ फॉर वाइल के बच्चे, हम पर अफसर दिखलाता।
0: अरे राजेश तू तू यहाँ कहाँ?
3: लोग चांद पर पहुंच जाते हैं, हमने यहाँ आकर कौन सी अनोखी बात पैदा कर दी?
2: आदत नहीं गई
3: कुत्ते की तुम जो ठहरी।
4: हाँ तो श्रीमान जी कब आए, क्यों आए और कब तक पधारे?

0: और
1: हुजूर, श्रीमान जी को आए हुए तो करीबन 30 साल हो गए। क्यों आए? शायद डैडी को एक अदद वारिस की दरकार रही हो। कब पधारूंगा भैया?
2: एक्सक्यूज मी सर।
0: यस रोजी।
2: सर आपको ये फाइल मांगता था?
0: हाँ ठीक है, तुम यहाँ रख दो, मैं बाद में देख लूंगा।
2: वेरी वेल सर।
1: यार तकदीर वाले, क्या बात,
0: आपकी दुआ है।
1: काश हमारी दुआओं जैसा असर तुम्हारी दुआओं में भी होता।
0: लेकिन हम तो दुआएं देते ही कहाँ हैं।
1: यार नितिन, नितिन तेरा ऑफिस एक गुलदस्ता है रे, गुलदस्ता। ताजे चुने हुए महकते हुए रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और हमारा एक ऑफिस है भाई, बबूल के भोंडे, बदसूरत कांटों से छिदा पिनकुशन।
0: भाईजान किसी ने क्या खूब कहा है, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते।
1: अरे थाम लेते हैं, दामन चीर देते हैं, बरखुरदार छलनी कर देते हैं।
0: अच्छा, चीर देते हैं, छलनी कर देते हैं। अरे मियां, जब दामन ही घटिया हो तो उससे कुछ और उम्मीद करना नादानी है।
1: अच्छा।
0: परले सिरे की बेवकूफी है, नहायत निचले दर्जे की नालायक है। वो माकल के पीछे लठ लेकर दौड़ने वाली मिसाल है।
1: बस, और बस, बस, बस, बस, आपकी भाषण प्रतिभा का तो मैं बहुत पहले से कायल हूँ जी।
0: अच्छे अच्छे कायल हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं।
1: क्यों नहीं साहब, आज भी कायल हो रहे हैं। देखिए ना, बैठे हैं भूखे प्यासे आपके लेक्चर के आसरे हैं।
0: भूखे प्यासे?
1: जी हाँ।
0: एनीवे नो फॉर्मेलिटी यार, अगर सचमुच भूख लगी हो तो यही कुछ मंगवाऊं, वरना आधे घंटे बाद तो लंच को तो चलेंगे ही।
1: ठीक है, आधा घंटा और सही। हम भी बैठे हैं तुम्हारी इंद्रपुरी में।
0: दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मैं जरा ये अर्जेंट काम निपटा लेता हूँ। तब तक तुम जरा ये मैगजीन देखो,
1: ये
0: तस्वीरें देखो।
1: ये तस्वीरें मैगजीन है? जीती जागती तस्वीरें छोड़कर मैं इन्हें देखूं? अबे आंख क्यों दिखाता है। अच्छा ये तस्वीरें देख रही है, क्या लिखा है? घेराव, लड़कियों द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव, बेचारे 6 घंटे तक कमरे से बाहर ना निकल सके। या नितिन, माफ करें डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर इस तस्वीर को देखकर आप बीती ख्याल आ ही गया।
0: अरे भूमिका छोड़, जल्दी से फूट।
1: भैया एक बार हम भी फंस गए थे अपने चीफ के साथ घेराव के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन साइट पर। एक से एक अक्खड़ खूंसट खुर्रांत वर्कर नारे लगाते और भी भयंकर लग रहे थे।
0: अच्छा फिर
1: क्या? सोचता हूँ अगर तुम्हारे ऑफिस का हसीन स्टाफ मेरा घेराव करे। सच कहता हूँ यार, उम्र भर उस घेराव में घिरा रहूंगा, बैठा रहूंगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे अब काम करने देगा या नहीं?
1: सच यार, अब उन भयानक शक्लों से तबीयत उब गई।
0: हो सकता है वक्त की मार से भयानक लगने वाले चेहरे मन में कितनी सुंदरता संजोए हों, और तुम्हारे ये सुंदर लगने वाले चेहरे।
1: सीरियस माता, समझ गया। यानी आपका मकसद है सौंदर्य की कसौटी मन में है, अंतर में है, चेहरा नहीं, ऊपरी रूप छलावा है, धोखा है, इत्यादि इत्यादि।
0: एग्जैक्टली।
1: अरे फिलोसफर की औलाद, हम अपनी भूख को भूलने की कोशिश कर रहे हैं और आप है कि अपनी फिलॉसफी झाड़ रहे हैं।
0: अरे चल भूखे चल, तू मुझे काम करने थोड़ा ही देगा।
1: हाँ ये बात हुई ना, भगवान तू बड़ा दयालु है।
0: बस जरा एक मिनट ना, मैं अपने कलीग से कह दूं।
1: हाँ,
0: गनीमत है आज चीफ टूर पर है। एक मिनट आया।
1: एक्सक्यूज मी, मैं जरा बाहर हॉल में खड़ा हो जाऊं।
0: बाहर
1: वो हॉल में?
0: नहीं,
1: एक चांस।
0: नहीं
1: यार, एक चांस
0: नहीं। अच्छा, ऐसा गजब मत करना, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। लीजिए जनाब, आ गए हम, चलिए
1: चले।
0: बिल्कुल
1: पक्का।
0: लेट्स गो। चल। That's it. Fountain chili.
3: यार, what a pleasure यार, बरसों के बाद पुराने साथियों से मिलना। कई बार पुराने एल्बम, कॉलेज के ग्रुप फोटोज देखता हूँ तो सारी मस्तियां, शरारतें, एडवेंचर्स आंखों के सामने आ जाते हैं। अरे अपना वो रमेश पांडे, ज्ञान, महादेव टंडन, मेहरोता, यार क्या ग्रुप।
1: अरे वो यार, वो अपना रमेश पांडे एक बार अचानक लखनऊ में मिल गया था। प्रोफेसर ही कर रहा है बच्चू देहरादून में।
0: अच्छा। अरे हाँ, वो ठाकुर रामबली सिंह थे ना अपने।
1: हाँ, वो
0: तो रिटायर हो चुके होंगे ना।
1: अच्छा, वो रामबली है भाई? रामबली गेम्स प्यून।
0: अरे नहीं, गेम्स सुपरिंटेंडेंट।
1: अरे वाह भैया, अंग्रेजी का फर्राटे से बोलता था। द प्रिंसिपल, द कॉलेज, द गोइंग एंड द टीम मैन। सॉलिड यार।
0: मजा आ गया यार।
1: अब मैं भी क्या खाक काम करूंगा भाई, इतना खिला दिया तुमने।
0: अरे यार, जब मैं तेरी उम्र का था।
1: जी हाँ, तब आप 5 किलो पूड़ियाँ, 10 किलो मिठाइयाँ, 15 किलो फल वगैरह खाते थे।

0: जैसे कि आपकी उम्र एक पूरी शताब्दी। तुम भी यार
1: मजाक छोड़। अच्छा तू ये बता, तू 4 बजे तक पहुंच रहा है ना मेरे ऑफिस में?
0: काश मैं इस गैप को और भी कम कर पाता यार, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है 4:30 पहुंच जाऊंगा।
1: 4:30
0: चलेगा?
1: 4:30 ओके डन।
0: ओके बाय।
1: ओके चलते हैं।
0: बंदा हाजिर है जिल्लेलाही में आयका में।
1: अरे तुम आ गए इतनी जल्दी?
0: जल्दी? अबे 4:30 बज रहे हैं। 4:30
1: बस यार जरा रुक जाओ, बस अभी चलते हैं।
0: लीजिए जनाब। रुक गए
2: सर, लेटर टाइप हो गया सर।
1: सो सून? वेरी गुड वेरी गुड। आई वाज वेटिंग फॉर दिस ओनली। गिव मी रेफरेंस योर लेटर। उफ रोजी, आर यू इन योर सेंसेस टुडे?
2: सर
1: आज ये तीसरा लेटर है जिसमें तुमने ब्लंडर किया है। ऑफिस आते वक्त दिल और दिमाग को फियांसी या बॉयफ्रेंड के पास मत छोड़कर आया करो। कंपनी पेज यू फॉर योर वर्क, नॉट फॉर योर फिजिकल प्रेजेंस ओनली। जाइए, जाकर दोबारा टाइप करके लाइए लेटर।
0: ए अबे ये क्या कर दिया, जरा समझा कर कह देता।
1: ठीक है ठीक है, तुम चुप रहो। अब जाओ, खड़ी क्यों तुम?
2: क्या हुआ रोजी?
3: रोजी रोता है।
2: क्या हुआ?
3: अरे अरे कुछ बोला क्या? अरे चलो चलो आ जाए, भाई के पास चलते हैं, वही निपटारा करेंगे। चलो चलो सब लोग, चलो बाबा चलो।
4: ठीक है मिस रोजी, आप चिंता ना करें, चीफ हाल यहाँ नहीं है, वरना सीधा उन्हीं के पास जाता। खैर नितिन साहब को ही देखता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
1: आइए आइए बैठिए।
4: जी मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ,
1: रोजी की वकालत करने आए हैं।
4: वकालत न्यायाधीश के सम्मुख होती है, आप तो?
1: मैं मुजरिम हूँ, यही ना?
4: जी हाँ, आपने स्टाफ को, वो भी एक महिला को, अपशब्द कहने का आपको क्या अधिकार है?
1: उस महिला को गलत काम करने का अधिकार है।
4: गलती इंसान से होती है।
1: मुझे सही काम करने की तनख्वाह मिलती है।
4: आप खामखा बात बढ़ा रहे हैं, देखिए।
1: मैंने बात खत्म कर दी, बात बढ़ाने तो आप आए।
4: देखिए नतीजा अच्छा नहीं होगा।
1: मुझे धमकी देने आया हो लीडर बनकर? जाओ जो जी में आया करो, हड़ताल करो, अनशन करो।
4: अनशन? अनशन तो आपको करना होगा। देखते हैं आप इस चैंबर से बाहर कैसे जाते हैं।
1: व्हाट?
5: तानाशाही का नाश हो।
6: तानाशाही का नाश हो।
4: स्टाफ यूनियन
6: जिंदाबाद।
4: स्टाफ यूनियन
6: जिंदाबाद।
4: स्टाफ यूनियन
6: जिंदाबाद।
4: तो मैंने तय किया है, हमारे चीफ के आने तक हम लोग मिस्टर नितिन का घेराव करेंगे, उन्हें उनके चैंबर से बाहर न निकलने देंगे।
0: गॉड यार, ये तुम्हारा गॉड भी कभी कभी गलत प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। रोज लॉटरी के पहले इनाम की दुआ मांगता था, पर आज तक ससुरी निकली नहीं, और आज मजाक में घेराव की तमन्ना की तो वो पूरी कर दी।
1: तो तू क्यों फिक्र करता है? तू जा, तुझे थोड़ी कोई रोकेगा। मुझे भुगतना है, मैं भुगतना।
0: नहीं नहीं नहीं, इन खूबसूरत वालाओं के बीच में मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ।
1: हेलो स्पीकिंग, क्या अस्पताल ले जा रही हो? एकाएक सीरियस हो गई है, ब्लड प्रेशर? लेकिन मैं तो अच्छा ठीक है, मैं सीधा अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और किसका फोन है, हुआ क्या?
1: यार वाइफ का फोन है, मदर को हॉस्पिटल ले जा रही है, एकाएक सीरियस हो गई वो।
0: देखो मैं तुम्हें लीडर से बात करता हूँ, चिंता मत करो।
4: दोस्तों प्लीज वेट। ठीक है हम आपकी जमानत पर?
0: जी हाँ मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ। जब तक नितिन वापस नहीं आ जाता मैं यहीं बैठकर आपके घेराव को कामयाब बनाऊंगा। देखिए ना, उनकी मदर सीरियस है।
4: ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही तो हम आपकी बात मान रहे हैं, वरना तो।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा नितिन तुम जाओ, मैं यहीं बैठूंगा, और हाँ पहुंचकर फोन जरूर करना।
1: जरूर करूंगा। थैंक यू मिस्टर अजय, एवरीबॉडी थैंक यू प्लीज।
2: गुड लक टू यू मिस्टर नितिन।
1: थैंक यू रोजी, थैंक यू।
4: मेरा ख्याल है यू लेडीज कैन गो नाउ।
0: मर गए सब, जा रहे हैं, ये कैसा घेराव है, सब जा ही रहे हैं। सोचा था एक नया तजुर्बा होगा, वो भी खिसक गया। अरे अब क्या, अकेला बैठूं? हेलो नितिन, अरे भाई मदर कैसी है? अबे ए, ए, ए, ए, अरे हंस क्यों रहा है? अरे यहाँ जान आफत में बसी है। मजा, अरे कैसा मजा? अरे वो तो सब गई,

0: अरे ये क्या मजाक है साले, हंसता ही जा रहा तू। भौड़क में गई मेरी जमानत, मैं जा रहा हूँ अपने होटल, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। अरे नितिन, अस्पताल से इतनी जल्दी आ गया?
1: अरे गया ही कौन था
0: क्या? और फिर वो टेलीफोन, वो मदर,
1: वो साइड

0: अपने होटल जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। अरे अरे नितिन, अस्पताल से इतनी जल्दी आ गया?
1: अरे गया ही कौन था?
0: क्या? और फिर वो टेलीफोन, वो मदर?
1: वो साइड वाले चैम्बर से किया था। खैर मेरे पुराने दोस्त, तुम्हें नया तजुर्बा दिलाने वाले मेरे इन साथियों से मिलो। मिस्टर अजय, हमारे ड्रामेटिक क्लब के सेक्रेटरी।
2: हेलो
3: हेलो।
1: और ये सब है हमारे ड्रामेटिक क्लब के कलाकार।
4: हेलो
3: हेलो हेलो हेलो। लेकिन वो ये वो सिस्कियां, वो
1: ये वो सब ड्रामा था।

नया तजुर्बा। हवा महल में आज आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये झलकी सुनी। निर्देशिका अनुराधा शर्मा। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए शब्बीर अहमद का लिखा और मेट ब्रॉस का संगीतबद्ध किया गीत, आवाज मेट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड।

A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में अब सुनिए इरशाद कामिल का लिखा गीत, आवाजें शिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की, फिल्म का नाम रांझणा।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ड बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

श्रोताओं, क्या थैलेसीमिया, लुकीमिया या दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक उम्मीद की किरण बन सकता है? बीएमटी की जरूरत कब पड़ती है? क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सामान्य जीवन जिया जा सकता है? या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कोई राय लेना चाहते हैं, तो इस बार एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर अलका खटवाल, प्रोफेसर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार।

अभी आपने मिथुन के गीत संगीत निर्देशन में कबीर सिंह का गीत सुना, कबीर सिंह फिल्म का गीत सुना, आवाज अरिजीत सिंह की थी। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने

0: हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
0: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
0: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
1: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
4: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1086

0: लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गायक गीत से। जयदेव के संगीत निर्देशन में ये गीत लिखा गया है और फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म तुम्हारे लिए में सुना। लीजिए अब किशोर कुमार का गाया अनुरोध फिल्म का गीत सुनिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सब सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: बिल्कुल,
1: हाँ।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सुनिए इंदिवर का लिखा गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम कुर्बानी।

आपके लिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सुनिए इंदिवर का लिखा गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम कुर्बानी।

अभी आपने इजाजत फिल्म में आशा भोसले को सुना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया किनारा फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है गुलजार ने।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है आपके हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाली वर्सटाइल गायिका आशा भोसले पर। आठ सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में जन्मी संगीत नाटकों के अभिनेता गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री आशा को फिल्मों में गाने का पहला अवसर तब मिला जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 1943 की

ये मराठी फिल्म थी माझ बाळ। संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। हिंदी फिल्मों में आशा जी की शुरुआत 1948 के हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। श्रोताओं, आशा भोसले के गाए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे इस प्रतिभावान गायिका के हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गाए लगभग सभी प्रकार के गीतों की। जी हाँ, भक्ति रचनाएं, गजल गीत, लोक गीत, कव्वाली, पॉप गीत, अन्य भाषाओं के गीत, विदेशी संगीतकारों तथा गायकों के साथ गायन और शास्त्रीय संगीत भी।

शास्त्रीय संगीत का एक मंजा हुआ कलाकार ही अपनी गायकी में इतना वैविध्य दिखा सकता है। आशा भोसले की गायकी की सफल यात्रा हिंदी और मराठी में समान रूप से जारी रही।

संत अमृत राय हो, संत जनाबाई हो, संत ज्ञानेश्वर हो या किसी और संत की रचना, आशा भोसले के भक्ति रस में डूबे सुरों से सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। मराठी भाव गीतों की दुनिया में आशा जी का नाम शीर्ष पर है। गदी माडगुड़कर, बाभ बोरकर, आरती प्रभु, शांता शेड़के, शांताराम नांदगांवकर, सुधीर मोघे और सुरेश भट्ट जैसे नामचीन कवियों की रचनाएं, जब वसंत प्रभु, दत्ता डावजेकर, सुधीर फड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े और श्रीधर फड़के जैसे ख्यातनाम संगीतकारों की सुरावली में बंधकर आशा भोसले के कंठ से निकलती हैं, तब वो सुनने वालों के दिल में उतरकर उनके भाव विश्व को हिलाकर रख देती है।

महाराष्ट्र में संगीत प्रेमियों के मन में नाट्य संगीत का विशेष स्थान है और उसमें नाट्य गीत यदि आशा भोसले के स्वर में हो तो क्या कहने।

लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को आशा जी का स्वर मिला तो ये गीत फिल्मी हो या गैर फिल्मी अभिजात हो गए, क्लासिक्स में गिने गए। जैसे जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीतकार जयदेव।

कभी नेकी भी उसके जी में आ जाए है मुझसे। गालिब साहब का ये कलाम और ऐसे ही हिंदी उर्दू की अन्य रचनाएं आशा जी के स्वर में सुनकर श्रोताओं के दिलों में आज भी चैनो करार आ ही जाता है और उभरने लगती हैं यादें गजलों के उस एल्बम की जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था गुलाम अली के साथ मिराज।

साथ साथ सज जाती है आशा जी के जादुई सुरों की महफिल। सामईन के जहन में आज भी उन्हीं दिनों में जाने माने गजल गायक हरिहरन के साथ आशा भोसले ने रिकॉर्ड किया था एल्बम आब

आपकी आशा। इस एल्बम के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरे थे। संगीतकार राहुल देव बर्मन। मजरू साहब का ही लिखा हुआ गाना गाकर आशा भोसले ने अपने आप को साबित किया था पॉप म्यूजिक की दुनिया में। संगीत लेस्ली लुई का। एल्बम

करो। 80 के दशक के जाते जाते और 90 के दशक की शुरुआत में संगीत प्रेमियों में फिल्म संगीत की बनिस्बत गैर फिल्मी संगीत कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। गीत, गजल, इंडी पॉप और भजनों के नए नए एल्बम बाजार में आ रहे थे। इसी दौरान संगम हुआ संगीत की दुनिया के तीन महान हस्तियों का, जो फिल्मों में इससे पहले कई बार हो चुका था। जी हाँ, गुलजार, आर डी बर्मन और आशा भोसले। इस त्रिवेणी संगम से उभरा एक अनूठा अनोखा अलबेला एल्बम दिल पड़ोसी है।

पड़ोस में ही नहीं चाहने वालों के दिल में ही घर बना लिया इन गीतों ने, और ये गाने आज भी गूंज रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों की लोकप्रियता के इस दौर में अपनी बहन गान कोकिला लता मंगेशकर और गजल नवाज जगजीत सिंह के साथ मिलकर आशा भोसले ने अपने चाहने वालों को जो तोहफा पेश किया था, उस एल्बम का नाम था दिल कहीं होश कहीं।

मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ बांग्ला भाषा में आशा भोसले के गाए गीतों का एक सफलतम करियर रहा है। आशा जी ने सबसे पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड किया था 1958 में। मन्ना डे द्वारा संगीतबद्ध इस युगल गीत

नेतृत्व में। उनके साथ आवाज थी विनोद चट्टोपाध्याय की। अगले ही वर्ष 1959 में आशा भोसले ने अपना पहला पूजो गीत रिकॉर्ड किया। ये वो देवी स्तुति के गीत होते हैं श्रोताओं, जो बंगाल में नवरात्रि के समय प्रकाशित होते हैं। आर डी बर्मन ने हिंदी फिल्मों के कुछ लोकप्रिय गीतों को बांग्ला में रिकॉर्ड करवाया था। ये गीत हैं।

कानों में शहद घोलती इस आवाज में किसी भी भाषा के गीत हों, सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्मी गीतों का आज जिक्र ही नहीं होगा। आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी गीत अनसुने हैं या बहुत कम सुने जाते हैं, जैसे फिल्म अनकही का ये।

1980 के दशक के मध्य में बॉय जॉर्ज और स्टीफन ल्यूसकॉम के साथ आशा भोसले ने गीत गाए हैं। 1997 की बात है, युवकों के एक संगीत समूह कोड रेड के साथ मिलकर आशा जी ने एक प्रेम गीत रिकॉर्ड किया था अपनी उम्र के 64वें साल में। जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले ने हमेशा संगीत को अहमियत दी। संगीत के क्षेत्र में होने वाले प्रयोग उनके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर संगीतकार नई पीढ़ी के हों, भारत के हों या विदेश के, गीत किसी और भाषा का हो, आशा जी ने हर चुनौती को स्वीकार किया और जब जब जिस गीत को गाया अपने स्वर्णिम सुरों से उस गीत को सुशोभित कर दिया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा जी को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण प्रदान किया जा चुका है। भारतीय सिनेमा को योगदान के लिए आशा

भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग अनुराग और वैराग्य का सुखद संयोग जहां है वो है आशा भोसले का स्व अलंकृत स्वर। हम सब की प्यारी आशा ताई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं के गाए इस गीत के द्वारा देते हैं अनंत शुभकामनाएं।

0: आशा भोसले पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आलेख, शोध और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्नर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
4: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। इस वेले रात दे 10:30 हो चुके ने। हुण पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना नूं मानता दित्ती। इस नाल भारतीय बरामदकारां नूं एक कार्बन निकास लई 2 टैक्स देण तों राहत मिलेगी। राष्ट्रीय महिला कमीशन द्वारा आयोजित फरीदाबाद जिले सूरजगंड विच आयोजित वर्कशॉप संपन्न हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी ने महिला लीडरशिप नूं मजबूत करन ते जोर दित्ता। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ विच MLA होस्टल, डिस्पेंसरी अते अंबाला शहर दे करनाल जिलियां दे सिविल हस्पतालां लई नवीआं अति आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनां दी खरीद नूं मंजूरी दित्ती है। हरियाणा दे ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस संसद मैंबर दीपेंद्र हुड्डा दे हरियाणा विच खेडां नूं उत्साहित ना करन दे दोषां नूं भाजपा सरकार वल्लों अंबाला विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर दीआं खेड ढांचा विकसित करन दी मिसाल दिंदिआं रद्द कीता। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार की नशे की समस्या नाल निजिठण लई कोई ठोस कदम ना चुकन ते आलोचना कीती। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगवाई हेठ अज चंडीगढ़ विच आम आदमी पार्टी सरकार विरुद्ध राज भर के कांग्रेसी वर्करां ने विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार ने प्रशासकीय प्रणाली विच वड्डा फेरबदल करदे तुरंत प्रभाव नाल 16 IAS अते 10 HCS अधिकारियों के तबादले के हुक्म जारी किए। राष्ट्रीय रक्षा अकैडमी विच अपनी सिखलाई पूरी करन मगरों भारतीय फौज विच लैफ्टिनेंट बनी अंबाला दे सिरसगढ़ पिंड दी सिमरनजीत कौर दा पिंड वासियां ने निघा स्वागत कीता। उसने नौजवानां नूं बिना थके पूरी लगन अते अनुशासन नाल मेहनत करन दा मंत्र दिता। इह सन हुण तक दीआं मुख प्रादेशिक खबरां।
5: आज फिर लेट हो गए?
6: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
5: क्यों बैठे थे बाहर?
6: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
5: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
6: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: हुण पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। प्रोग्राम सुरसांझ लैके हाजिर है तुहाडी रेडियो सखी हरप्रीत हांडा। मेरी प्यार भरी नमस्कार। श्रोतियों, प्रोग्राम दा आगाज कर रहे हैं अमरिंदर गिल दे गाए गीत नाल।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: श्रोतियों, ब्रेक तो बाद लेके आए हैं दलेर मेहंदी का गाया गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस

0: यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।